सुप्रभात। यह आकाशवाणी की विविध भारती सेवा का जयपुर केंद्र है। FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की ये पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: And also infrastructure development that has happened.
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये है विविध भारती
5: वंदन वार।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, विचार बदलेंगे तो जीवन भी बदलेगा, शुरुआत हमेशा मन से होती है। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। कुछ ही पलों में 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 191। छह 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार है गायक अनूप जलोटा। सुनिए इस श्रृंखला का भाग 6, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी, इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2:00। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक पंकज उधास पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10 पिटारा में सुनिए बॉम्बे टॉकीज गायक गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रेकर की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन है रीमा जोशी का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 11 विविधा में सुनिए मजरू सुल्तानपुरी पर आधारित चित्र भारती, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 से तय करेंगे हम सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 सुनिए मन चाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग में आप सुनेंगे नाटक शकुंतला, इस नाटक का दूसरा भाग। मूल लेखन है कालिदास का, रूपांतरण और प्रस्तुति राजेश रेड्डी की। 4 पिटारा में आप सुनेंगे उजाले उनकी यादों के निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग, प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7 विशेष जयमाला में सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम पर निर्धारित, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज में क्लेनरेट मास्टर इब्राहिम से बातचीत। 7:00 में सुनिए हास्य नाटिका क्रोध हास्य और शलाका, माफ कीजिएगा क्रोध हरण और शलाका। लेखन है चिरंजीत का, निर्देशक दीनानाथ। 8:15 पर आप सुनेंगे रात्रि चित्रलोक। 9 आपके लिए। 10 छाया गीत और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

महाराज दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं, रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरि भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हट करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। खुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

0: सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 191।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। करता पल पल तेरा वंदन, युग युग का प्यासा मेरा मन, कर ले तू स्वीकार मुरारी, तू ये मेरा प्रणाम। श्री अनूप जलोटा जी को हमारा प्रणाम। स्वागत है सर।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला के माध्यम से हम भक्ति रस की वर्षा से भीग रहे हैं, और अनूप जी हमें आप बताएंगे कि भक्ति के कौन से रंग से हमारे श्रोताओं को रंग रहे हैं इस कड़ी में।
2: ये भजन तो ऐसा क्षेत्र है कि कुछ भी गाया जाए तो पहले तो अपनी खुद की चुनरिया रंग जाती है, और जब खुद रंग गए तो सामने वाला तो रंग ही जाएगा। इसलिए इसका आनंद जो है वो पहले स्वांतः सुखाय वाला होना चाहिए
1: जी,
2: कि भजन गाकर उस भक्ति में उस रस में अपने को पूरा तरह डुबो लिया जाए, और वही आनंद मैं आज तक लेता रहा हूँ
1: जी। अनूप जी, ये जो सुख की बात की, भक्ति रचनाओं से जो सुख प्राप्त होता है, लेकिन एक सुख और है, वो है बचपन का सुख। बचपन के संसार में जब पहुँचते हैं तो एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है। आपको हम आपके बचपन की ओर ले चल रहे हैं, जहाँ आपका बचपन है, करियर है। हमें बताइए अपने करियर के बारे में और बचपन की उन गलियों के बारे में जब आपने गाना शुरू किया।
2: लखनऊ में गुजरा है बचपन, और 7 साल की आयु थी जब मैं पिताजी से, जब मैंने सीखना भी शुरू कर दिया था और स्टेज पे गाना भी शुरू कर दिया था। सो 7 साल की आयु से मैं मंच पर गा रहा हूँ, और जैसा कि पहले मैं एक बार बता चुका हूँ कि पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो उन्होंने सख्ती से सिखाया है
1: जी।
2: लेकिन स्टेज पे जब मैं उनके साथ गाता था तो बड़ी नरमी रखते थे, प्यार से गवाते थे, तो हिम्मत बढ़ती थी। स्टेज पे डांटना वो सब नहीं होता था, स्टेज पे बड़े प्यार से। तो जो ऑडियंस फियर होता है, कहते हैं कि स्टेज पे कुछ लोग डरते हैं, वो चीज़ बचपन से ही निकल गई थी। तो अब ऑडियंस जितनी भी बैठी हो उसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मन में एक विश्वास जगाना ज़रूरी होता है कि जब हम स्टेज पे बैठे हैं तो उसको ठीक से गाएं। आकाशवाणी से, विविध भारती से, ऑल इंडिया रेडियो से हमारा संबंध बहुत पुराना है
1: जी।
2: मुझे याद है जब मैं 17 या 18 साल का हूँगा, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में मैंने ऑडिशन दिया भजन गीत गज़ल के लिए, और मेरी माँ, वो भी थोड़ा गाने में शौक रखती थी, तो उन्होंने कहा कि मैं भी गाऊंगी। मैंने कहा चलिए आप भी ऑडिशन दीजिए। हम दोनों ने फॉर्म भरा और हम दोनों ऑडिशन देने गए। उन दिनों मेरा अच्छा खासा नाम लखनऊ के आसपास हो चुका था एज ए सिंगर, खूब बिजी आर्टिस्ट था मैं। तो मैं और मेरी माँ जब हम लोग ऑडिशन देने गए, तो उस ऑडिशन में मेरी माँ पास हो गई थी, मैं फेल हो गया था।
1: क्या बात है।
2: तो उसके बाद मुझे कहने लगी, देखा बड़ी बड़ी बातें करते हो, देखो क्या हुआ। खैर, उसके बाद कुछ 6 महीने बाद दोबारा चांस दिया जाता है ऑडिशन का, फिर मैंने इलाहाबाद से ऑडिशन दिया और वहाँ से मैं पास हो गया
1: जी।
2: उसके बाद हम बम्बई आ गए, जब मैं 20 साल की आयु थी बॉम्बे आ गया था। बॉम्बे आकर मैं गज़ल भजन रिकॉर्ड करने ऑल इंडिया रेडियो पहुँचा, तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि पहली बार रिकॉर्ड करने आए हो, यहाँ एक कोरल ग्रुप है जो कानू घोष जी चलाते हैं, तो उसमें देख लो अगर तुम्हें चांस मिल जाए। तो मैंने कानू घोष जी को गाना सुनाया
1: जी।
2: उन्होंने मेरी भर्ती कर ली और मैं ऑल इंडिया रेडियो कोरल ग्रुप का मेंबर बन गया। मैंने करीब 2.5-3 साल उसमें गाया। मेरी तनख्वाह थी 320 रुपये महीना
1: जी,
2: और
1: जी।
2: हम उसमें गाते थे, रोज़ आते थे, रियाज करते थे, गाते थे, और महेंद्र कपूर साहब या उषा मंगेशकर जी ऐसे कलाकार आते थे, उनके पीछे हम कोरस गाते थे
1: जी।
2: तो वो

0: मेरी ट्रेनिंग का टाइम था, बहुत मज़ा उसका लिया है मैंने। तो इस तरह से आप सोच लीजिए कि मेरा जो संबंध है ऑल इंडिया रेडियो से, वो पिछले 45 साल से चल रहा है। और ये संबंध ऐसा हो गया है कि मैं जब भी किसी ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन पर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सेकंड होम में आया हूँ, इतना पुराना संबंध मेरा है।
1: और अब आकाशवाणी परिवार के सदस्य के रूप में भी शामिल है।
0: हाँ, वो तो मुझे कुछ ड्यूटी दी है सरकार ने, तो मैं प्रसार भारती का बोर्ड मेंबर हूँ, काम कर रहा हूँ, और इस क्षेत्र में काम करके मुझे बहुत खुशी हो रही है।
1: आपने अभी जिक्र किया था कि माँ के साथ आकाशवाणी पर गए थे, आकाशवाणी केंद्र पर, और माँ ऑडिशन पास हुई थी। तो पिताजी से आपने गाने की तालीम ली, माँ से कौन सी तालीम ली जो आपके जीवन में काम आए?
0: शादी के पहले वो बहुत अच्छा कथक नृत्य करती थी, और वो इतना अच्छा नृत्य करती थी कि आज भी बिरजू महाराज जी और सितारे देवी जी जब भी मिलते रहते थे तो हमारी मम्मी का जिक्र करते हैं कि भाई वो बहुत अच्छा कथक करती थी, उन्होंने छोड़ दिया। तो शादी के बाद हमारी मदर ने छोड़ दिया था कथक, लेकिन क्योंकि जो भी डांसर्स हैं उनके अंदर इतनी लय होती है, सुर होता है, जैसे बिरजू महाराज जी कितना अच्छा गाते हैं, तो लय और सुर जो दोनों मिला के है मुझ में जो आया है वो पिताजी से स्वर आया है और माँ से लय आई है।
1: क्या बात,
0: तो वो दोनों चीज़ मिला के मैं काम कर रहा हूँ।
1: अब हम चाहते हैं कि उन दिनों को याद करते हुए आप कौन सा भजन श्रोताओं को सुनवाएंगे और उसकी चर्चा करिए।
0: जग में

एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रख के सुने तो एक नया आनंद आएगा।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। और ये जो रागों का खेल आप करते हैं वो बहुत ही अप्रतिम होता है, इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। वक्त हो रहा है इजाज़त लेने का, तो हम अपने श्रोताओं से अनुमति लेने से पहले बता दें, ऐसी लागी लगन भक्तिभाव पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी छठी कड़ी।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं परदेसी फिल्म के इस गाने के साथ। मन्ना डे की आवाज में अली सरदार जफारी की आवाज में, माफ कीजिएगा, अली सरदार जफारी के बोल और संगीत है अनिल बिस्वास का।
1: अरे जरा सुनो लगा कर ध्यान, यहाँ जन्मे लोक महान बड़े

आप सुन रहे थे अली सरदार जाफरी का लिखा ये गाना परदेसी फिल्म से। अगला गाना सुनते हैं महात्मा कबीर फिल्म से, सी एच आत्मा की आवाज में सी पांडे के बोल और अनिल विश्वास का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में एक मीठी सी छेड़खानी। प्यार की राहें फिल्म से सुनिए इस गाने को। कन्नू घोष ने लिखा है, प्रेम धवन का संगीत।

आखिर कौन है मधुबाला का चिच्चोर। आइए सुनते हैं तराना फिल्म से ये गाना लता मंगेशकर और संध्या मुखर्जी की आवाज में, प्रेम धवन के बोल, संगीत अनिल बिस्वास का।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: संगदिल फिल्म से।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं वारिस फिल्म से। सुरैया की आवाज में ये एक मीठी सी लोरी को लिखा है कमर जलालाबादी ने और अनिल बिस्वास ने इसका संगीत दिया है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गाना हमारी याद आएगी फिल्म से, केदार शर्मा के बोल। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्म

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे थे जंजीर फिल्म का गाना। अगला गाना सुनवाने से पहले हम आपको बता दें, इस फिल्म की एक बहुत ही खास बात है और शायद वही खास बात अगले गाने के फिल्म में भी हो और

शायद वही खास बात उसके अगले गाने की फिल्म की भी हो। आखिर है क्या ये खास बात, बताएंगे आपको इस गाने के बाद। सुनिए लावारिस फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना, अनजान के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: इन फिल्मों की खास बात है निर्देशक प्रकाश मेहरा और अभिनेता अमिताभ बच्चन की सुपरहिट जोड़ी।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: सुनिएगा इस सुपरहिट जोड़ी की फिल्मों के और गाने, लेकिन इस अंतराल के बाद।

मेहरा और अभिनेता अमिताभ बच्चन की सुपरहिट जोड़ी के फिल्मों के गाने। आइए सुनते हैं हाथ की सफाई फिल्म से ये गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: हम आकाशवाणी की विविध भारती सेवा के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला

0: समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आप

0: आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
2: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक

0: पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार, आज है विश्व दूर संचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। विश्व दूर संचार दिवस प्रत्येक वर्ष के 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन मानव सभ्यता के संचार के महत्व, उसकी प्रगति और उसके भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए समर्पित है। आज का युग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, यानी सूचना और प्रौद्योगिकी का युग, जहां दूर संचार ने दुनिया को एक छोटे से गांव में परिवर्तित कर दिया है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को दूर संचार के महत्व के प्रति जागरूक करना है, डिजिटल विभाजन को कम करने के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

दूर संचार का अर्थ है दूरी पर स्थित व्यक्तियों का या स्थानों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना। पहले के समय में संदेश पहुंचाने के लिए दूत, कबूतर या डाक का सहारा लिया जाता था, जिसमें काफी समय लगता था। परंतु आज के मोबाइल फोन, इंटरनेट, उपग्रह और अन्य आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कुछ ही सेकंड में संदेश दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है। यह परिवर्तन ना केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है, बल्कि मानव जीवन को सरल और गतिशील बनाने का आधार भी है। विश्व दूरसंचार दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा की गई थी और 17 मई 1865 को इस संगठन की स्थापना हुई। दूरसंचार का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कक्षाएं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल पुस्तकालय ज्ञान को कितना सुलभ बना देते हैं। चिकित्सा के लिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों से सलाह ली जा सकती है। व्यापार उद्योगों के लिए ई कॉमर्स और डिजिटल लेन देन से आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है। सामाजिक जीवन में भी सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।

0: What is mobile number? What is your smile number?
1: What is your style number? Karo kya dial number?
2: हालांकि दूर संचार के विकास के साथ कई सारी चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता की समस्या, डिजिटल असमानता, ऐसी कई सारी गंभीरता से विचार करने वाली बातें भी समक्ष आती हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तकनीकी सुविधाओं का अंतर एक बड़ी चुनौती हमारे समक्ष है, इसे भी दूर करना है। तो इन्हें दूर करने के लिए बहुत सरल सी बात है कि हम अपने आप को साइबर अपराधों से बचा कर रखें। यानी हमारे पास अगर कोई OTP नंबर पूछता है तो वह हम उसे ना दें, या फिर हमारी कोई अपनी गोपनीय बातें या गोपनीय जानकारी सभी के समक्ष प्रस्तुत ना करें। इसके साथ ही और भी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जिनके तहत हम हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस हमें अवसर प्रदान करता है कि हम इस क्षेत्र में उपलब्धियों का मूल्यांकन कर लें, भविष्य की दिशा तय कर लें और अपने जीवन को डिजिटलाइज करके तकनीकी रूप से निर्माण कर सकें। दूरसंचार आधुनिक जीवन की धड़कन बन चुका है और यह सूचना का ही नहीं रह गया माध्यम केवल, यह बन चुका है माध्यम प्रगति का, विकास का और वैश्विक एकता का। इसके महत्व को समझते हुए विवेकपूर्ण और सकारात्मक तरीके से हमें इसका उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और अधिक जुड़ी हुई दुनिया में जीवन व्यतीत कर सकें, ऐसा समाज देना है। आज के दिन का यही उद्देश्य है।

आधुनिक तकनीकी युग में चार कदम संभल कर चलिए और चार कदम आत्मविश्वास के साथ, और जी लीजिए अपने जीवन को पूरी पूर्णता के साथ में। आज की त्रिवेणी से आज्ञा दीजिए, विधि जैन को नमस्कार।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: चित्रलोक कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
4: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
3: तुमने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
4: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
5: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131 132 आतिश मार्केट।
6: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। संडे की लेजी सुबह में घोलते हैं थोड़ी सी रिदम, थोड़ी सी मेलेडी। हम तुम और घोस्ट फिल्म के इस गाने के साथ के और श्रेया घोषाल की आवाज में।

आइए अब सुनते हैं एक प्यारा सा मैसेज अपने यारम के नाम। एक थी डायन फिल्म से सुनिधि चौहान और क्लिंटन सरेओ की आवाजों में गुलजार के बोल विशाल भारद्वाज का संगीत।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

गुस्सा वो बिन बुलाए मेहमान है जो कभी भी आ जाता है, और वजह बेवजह बस थोड़ी सी खटास छोड़ के चला जाता है। वैसे कभी कभी गुस्से की वजह हाई बीपी भी हो सकता है, और इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। साइलेंट किलर कहे जाने वाली हाई ब्लड प्रेशर को समय पर पहचानना बेहद ज़रूरी है। नियमित जांच, सही खान पान, कम स्ट्रेस और थोड़ी सी सेल्फ केयर, यही है बेहतर हेल्थ की शुरुआत।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से आप सुन रहे थे शंकर महादेवन, सूरज जगन और जोई बारुआ की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत। अगला गाना कह रहा है आपसे खुद की धड़कनें सुनने को। कभी अलविदा ना कहना फिल्म से ये गाना शफाकत अमानत अली की आवाज में, उनके साथ गाया है ये गाना शंकर महादेवन ने। जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: आपने सुना चित्रलोक कार्यक्रम। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नीदरलैंड्स संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा, पिछले एक दशक में दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान संपन्न हुआ। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। और CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जैटन के बीच व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। हेग में हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की।

0: हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नेदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जैटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान संपन्न हो गया है। 27 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान में 183 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार रथों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी पहुंचाई गई। बगरू के ठिकरिया गांव में आयोजित ग्राम रथ समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भाग लिया। उन्होंने VC के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। समारोह में श्री शर्मा ने कहा कि सरकार देश के विकास का रोड मैप बनाकर पानी, बिजली और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए MOU किए गए हैं, वहीं कल्याणकारी योजनाओं से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम रथ समापन समारोह में जाने के लिए प्रेरक पहल करते हुए मुख्यमंत्री निवास से बगरू के ठिकरिया गांव तक EV बस से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन आधारित EV बस का उपयोग कर आमजन को ग्रीन मोबिलिटी का संदेश दिया। इस दौरान उनके साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र की अध्यापक हैं। CBI के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले CBI ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। दोनों अभियुक्तों को कल पुणे की एक अदालत में पेश किया गया और बाद में जांच के लिए दिल्ली लाया गया। इस बीच CBI ने मामले की जांच करते हुए देश में 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। विशेष समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। राज्य विधानसभा में इससे पहले कई नवाचार किए गए हैं जिससे सदन की अनूठी पहचान बनी है। एक रिपोर्ट।
2: नए राजस्थान विधानसभा भवन के निर्माण के बाद भवन को गुलाबी नगर की पहचान के अनुरूप विकसित करने के साथ ही यहां कई नवाचार किए गए हैं। इनमें डिजिटल और कागज रहित व्यवस्था, डिजिटल संग्रहालय, संविधान दीर्घा, वंदे मातरम दीर्घा, जन दर्शन कार्यक्रम, शौर्य वाटिका, नक्षत्र वाटिका और औषधीय वाटिका शामिल हैं। इसके अलावा ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था, महिला दिवस का आयोजन, उत्तरदायित्व प्रश्नोत्तरी, केंद्रीय कक्ष की परिकल्पना और संविधान क्लब को विचार विमर्श के केंद्र के रूप में विकसित करने जैसे कई कार्य किए गए हैं। इनसे राजस्थान विधानसभा की देश भर में अनूठी पहचान बनी है। ये नवाचार जनता और युवाओं को न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं से रूबरू कराते हैं बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक उत्तरदायित्व के प्रति भी जागरूक करते हैं। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक।
1: प्रवासी पाली वासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए जिले में आओ गांव चले अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने अभियान के लिए जिला स्तर पर एक प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास जैसे जनउपयोगी कार्यों में प्रवासियों से सहयोग प्राप्त करना है। इच्छुक प्रवासी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से इस प्रकोष्ठ

0: वरिष्ठ से संपर्क कर सहयोग कर सकते हैं। जैसलमेर में आमजन तक पौधों की जानकारी और उपलब्धता के लिए वन विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री पंच गौरव अभियान के तहत एक डिजिटल कियोस्क, डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले तैयार किया जा रहा है, जो लोगों को पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के साथ ही उन्हें डिजिटल तरीके से पौधे खरीदने की सुविधा भी देगा। ये डिजिटल डिस्प्ले ऐसे स्थानों पर लगाया जाएगा जहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। वन विभाग के उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने ये जानकारी दी।
1: करीब 24 जो प्लांट स्पीशीज हैं उनके बारे में एक इंटरैक्टिव वे में हम इस कियोस्क के माध्यम से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। जो ये कियोस्क है हम कलेक्ट्रेट या फिर कोई ऐसे स्थान पे रखेंगे जहां लोग ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएं। तो इसके माध्यम से जो जितने भी पौधे हैं 24 पौधे उनके बारे में लोग इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे, उसके यूजेस क्या हैं, उसे प्लांटिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हम नर्सरी का लोकेशन वगैरह भी इसमें इस कियोस्क के माध्यम से लोग जान सकेंगे कि कहां से पौधे फिजिकली लेना है। इसके अलावा जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना है हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ट्वीक्स कर रहे हैं ताकि लोग इसमें स्कैन करके लोग अपने SOID से परचेज कर पाएं इस कियोस्क के माध्यम से।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नीदरलैंड्स संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा, पिछले एक दशक में दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान सम्पन्न हुआ। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। और CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी की विविध भारती सेवा के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है FM रेडियो पिंक सिटी कार्यक्रम।

0: हेलो नमस्कार सुप्रभात गुड मॉर्निंग पिंगसरी, मैं हूँ आरजे वसुंधरा और आप सुन रहे हैं रेडियो पिंगसरी 100.3 एफएम पर लवली मॉर्निंग चिट चैट।
1: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंगसरी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
0: सुरक्षा ब्राइट्स, थोड़ी सी समर वाली सनशाइन, थोड़ी सी लेजी वीकेंड वाइब्स और थोड़ी सी वो संडे वाली रिलीफ फीलिंग कि आज ना ऑफिस का जल्दी है ना अलार्म्स का प्रेशर, बस आराम, फैमिली और रेडियो पिंक सिटी का साथ। और ऑनेस्टली संडे का ना असली मज़ा यही होता है, स्लो मॉर्निंग्स, ओल्ड सॉन्ग्स और दिल को हल्का कर देने वाली बातें। तो आप भी कंफर्टेबल हो जाइए, चाय या कॉफ़ी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ लम्हों तक हम करेंगे म्यूजिक मस्ती और कुछ हल्की फुल्की बातें। मैं हूँ आरजे वसुंधरा और ये है लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

दिन बाद मिलती है इस संडे की सौगात, सबके साथ दिल की सारी बात, कुछ पल अपने लिए, कुछ पल अपने अपनों के लिए। रेडियो पिंक सिटी देता है आपके एहसासों को जुबान और संडे को बनाता है और खुशनुमा। तो ट्यून कीजिए ना रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है। हाँ, कुछ तो बात है।

0: मेरे दिल में थोड़ी खाली। मैं निकला वो गड्डी लेके।
1: बारा सिंह की गड्डी कहाँ होगी फास्ट और कहाँ होगी स्लो। टेम्परेचर अपडेट, टेम्परेचर अपडेट ओनली ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: और पिंक सिटी, अब बात करते हैं आज के मौसम की। तो आज संडे 17 मई को अधिक ज्येष्ठ मास की शुरुआत भी हो चुकी है और आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेल्सियस दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक रहने वाला है। और फिलहाल जो टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 32 डिग्री सेल्सियस। जी बिल्कुल, पिंक सिटी में गर्मियाँ जो है ना अब फुल मूड में आ चुकी हैं। तो सुबह सुबह ही धूप आंखें दिखाने लगती है, लेकिन जयपुर वालों का वीकेंड भी, जो वीकेंड स्पिरिट है ना, वो भी कुछ कम नहीं है। कोई आमिर साइड मॉर्निंग ड्राइव प्लान कर रहा होगा, कोई जल महल के पास चिल कर रहा होगा, या कोई ना घर पर कूलर या एसी के सामने पूरा संडे इंजॉय करने के मूड में होगा। और भाई हो भी क्यों ना, आईपीएल भी चल रहे हैं, हम लोग क्रिकेट विकेट भी देख ही लेते हैं। जी बिल्कुल, संडे होते ही है रिलैक्स करने के लिए। और मगर आउटिंग के समय वाटर इनटेक का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि क्या है ना, हीट स्ट्रोक की दिक्कत हो सकती है। और फिलहाल एंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल ट्रैक्स ऑन योर रेडियो सेट्स। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM विद मी आरजे वसुंधरा। और दोस्तों, आज का दिन हिंदी साहित्य के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज बर्थ एनिवर्सरी है हिंदी भाषा के महान विद्वान, साहित्यकार और भाषा वैज्ञानिक धीरेन्द्र वर्मा जी की। 17 मई 1897 को बरेली में जन्मे धीरेन्द्र वर्मा जी ने हिंदी को सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी भावनाओं की आवाज़ बताया। धीरेन्द्र वर्मा जी ने हिंदी भाषा के इतिहास को दुनिया के सामने इतने सुंदर तरीके से रखा कि आज भी उनकी किताबें और विचार हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा है। और अब इस लवली मॉर्निंग चिटचैट में मूड को और लवली बनाने के लिए टाइम हो गया है एक शानदार सॉन्ग का। स्टे ट्यून विद मी आरजे वसुंधरा ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है,

वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। मैं हूँ आरजे वसुंधरा। और दोस्तों, आज की जो डेट है ना, यानी 17th में, सिर्फ एक नॉर्मल संडे नहीं है, क्योंकि आज है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। अब नाम थोड़ा सा बड़ा और टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका कनेक्शन हम सबकी डेली लाइफ से है। सोचिए ज़रा, सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले क्या चेक करते हैं? फोन, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, रील्स, मीम्स, कॉल्स, वीडियो चैट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, जीपीएस, म्यूजिक, रेडियो स्ट्रीमिंग, सब कुछ टेलीकॉम की वजह से पॉसिबल है। एक जमाना था जब ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था, एक इमोशन हुआ करता था, और आज एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने में वीडियो कॉल। वो दौर ही अलग था जब एसटीडी बूथ्स पर लंबी लाइंस लगा करती थी, और अब टाइपिंग देखकर ही एक्साइटमेंट हो जाता है ना। और ऑनेस्टली, टेक्नोलॉजी से जो डिस्टेंस है ना, उसको सिर्फ किलोमीटर्स तक ही लिमिटेड कर दिया है। अब ये रेडियो भी तो इसी कनेक्शन का हिस्सा है। आप हम ही सुन रहे हैं, कहीं कार में, किसी किचन में, कहीं हेडफोन्स पर, और हम कनेक्ट हैं इमोशन से। तो इस वर्ल्ड टेलीकॉम डे पर एक छोटा सा थैंक यू उन सभी इनविजिबल नेटवर्क्स को जो हम सबको कनेक्टेड रखते हैं। और अब इस नेटवर्क को फुल स्ट्रांग रखना, क्योंकि नेक्स्ट सॉन्ग आपके दिल से फुल कनेक्ट करने वाला है। ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

टेंशन टेंशन टेंशन। आजकल लगता है ना दोस्तों कि लाइफ ना एक नॉनस्टॉप नोटिफिकेशन बन चुकी है। कभी ऑफलाइन मेल्स, कभी ट्रैफिक जैम्स, कभी समर हीट और कभी बैटरी लो से भी ज़्यादा डेंजरस जो है पेशेंस लो। जी हाँ, सो पिंक सिटी आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM विद मी आरजे वसुंधरा। और आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो क्वाइटली बहुत लोगों की लाइफ में एंट्री ले लेती है और आजकल ये मिलना बहुत आम है, हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, आज हर साल आज ही के दिन यानी 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ताकि हम सब अपने दिल की स्पीड और लाइफ की रेस दोनों को थोड़ा बैलेंस कर सके। क्योंकि हाई बीपी एक साइलेंट विलन की तरह होता है। एक ज़माना था जब लोग शाम को टेरेस पर वॉक करते थे, अब लोग रील स्क्रॉल करते करते ही थक जाते हैं। और सच बताऊं, हम फोन्स को तो रेगुलर अपडेट करते हैं लेकिन खुद का जो हेल्थ अपडेट है ना वो लेना अक्सर भूल जाते हैं। तो जयपुर वालों, थोड़ा सा पानी ज़्यादा, टेंशन थोड़ी कम, क्योंकि दिल हेल्दी रहेगा तभी तो लाइफ की प्लेलिस्ट सुपर हिट चलेगी ना। और अब वॉल्यूम थोड़ा अप कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट गाना आपके मूड का बीपी बिल्कुल परफेक्ट करने वाला है। ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
3: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
2: तुमने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
3: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
4: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
5: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
6: आप सुन रहे हैं बॉलीवुड टॉकीज ओनली ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
7: हे पिंक सिटी, आप सुन रहे हैं 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। मैं हूँ आज वसुंधरा और संडे मॉर्निंग के इस खूबसूरत सफर में आपका स्वागत है। शो का नाम है बॉलीवुड टॉकी। संडे की ये सुबह नो हड़बड़ी, नो गड़बड़ी और बॉलीवुड की वो यादें जो दिल से कभी जाती ही नहीं। दोस्तों,

थे, महसूस किए जाते थे। और आज बॉलीवुड टॉकीज में हम लेकर आए हैं यादों का वही सुनहरा मौसम। तो चलिए इस संडे मॉर्निंग को और भी हसीन बनाते हैं ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: Hey, do you want to hear this?
1: जयपुर के दिल की धड़कन 100.3 FM 100.3 FM

100.3 FM रेडियो पिंक सिटी पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड टॉकीज। मैं हूं आरजे वसुंधरा। दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत सी हीरोइंस आई, बहुत से स्टार्स आए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पर आते ही घर जैसा सुकून देते हैं, और उन्हीं में से एक थी रीमा लागू जी। कल उनकी डेथ एनिवर्सरी है और आज बॉलीवुड टॉकीज उनकी उन मुस्कुराहट भरी यादों को दिल से याद कर रहा है। सोचिए, मैंने प्यार किया कि माँ, हम आपके हैं कौन की ममता, और कल होना होगा वो इमोशनल वॉर्मथ। एक ज़माना था जब उन्हें देखकर लगता था कि फिल्म में इमोशंस अब सच में आ गए हैं। उन्होंने सिर्फ माँ का रोल नहीं निभाया, उन्होंने हर घर का इमोशन स्क्रीन पर उतार दिया था। और सच कहूँ, बॉलीवुड टॉकीज बॉलीवुड की सबसे प्यारी जो मुस्कान है ना, वो अगर किसी माँ के चेहरे पर थी तो वो सिर्फ रीमा लागू जी थी। आज का ये सेगमेंट उन्हीं यादों के नाम है, क्योंकि कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

संगीत की बरसात हो या इन्फॉर्मेशन की सौगात, बिना रेडियो पिंक सिटी के बनती नहीं है बात। जयपुर के दिल की धड़कन 100.3 FM सुना क्या?

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
2: 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी, सुनते रहिए।
3: वेलकम बैक जब राइट्स, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड टॉकी सिर्फ 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी पर। और अब बात उस फिल्म मेकर की जिन्होंने बॉलीवुड को दिया स्टाइल, स्केल और सुपरस्टार वाला स्वैग, प्रकाश मेहरा। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उनके सिनेमा को सलाम करते हैं। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन ईरा याद है ना आप सबको, जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर, नमक हलाल, वो दौर ही अलग था। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के बाहर लंबी लाइंस होती थी, डायलॉग्स पर तालियां बजती थी और हीरो की एंट्री पर सीटियां। प्रकाश मेहरा सिर्फ डायरेक्टर नहीं थे, वो कमर्शियल बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के मैजिशियन थे। उनकी फिल्में इमोशन भी देती थी, ड्रामा भी, एक्शन भी और म्यूजिक भी सुपर हिट होता था। और इसी ग्रैंड बॉलीवुड फीलिंग के साथ चलिए सुनते हैं दो जबरदस्त गाने विद मी आरजे वसुंधरा, ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

संडे मॉर्निंग में थोड़ा सा फिल्मी थ्रिल हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड टॉकीज और मैं हूँ आरजे वसुंधरा। दोस्तों 80s और 90s में हॉरर फिल्म्स का ना एक अलग ही क्रेज था। बड़ी सी हवेली, हवा से हिलता दरवाज़ा, अंधेरा और बैकग्राउंड में वो डरावना म्यूजिक, और फिर एंट्री होती थी रैमसे फिल्म्स की। आज शाम रैमसे की बर्थ एनिवर्सरी भी है और उनके बिना बॉलीवुड हॉरर की कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती। सच बताइए, बचपन में रैमसे ब्रदर्स की फिल्म देखकर लाइट चलाकर सोने वाले लोग आज भी होंगे, है ना? लेकिन वही तो सिनेमा का मैजिक था। लिमिटेड टेक्नोलॉजी लेकिन इमेजिनेशन फुल पावर। और इसी रेट्रो स्पूकी मूड को कंटिन्यू करते हुए टाइम हो गया है कुछ फिल्मी ट्रिक्स का, क्योंकि यहाँ आज कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड टॉकीज, मैं हूं आरजे वसुंधरा आपके साथ, ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। दोस्तों, हर जनरेशन का अपना बॉलीवुड होता है और आज की जनरेशन की एनर्जेटिक एक्ट्रेसेस में एक नाम काफ़ी स्ट्रांगली उभर कर आया है, नुसरत भरूचा। और आज वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, तो बॉलीवुड टॉकीज की तरफ से उन्हें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विशेज। प्यार का पंचनामा हो, ड्रीम गर्ल हो या छोरी, नुसरत ने प्रूव किया कि मॉडर्न बॉलीवुड एक्ट्रेस सिर्फ ग्लैमर नहीं, परफॉर्मेंस भी लेकर आती है। और अच्छी बात यह है कि आज भी बॉलीवुड का कनेक्शन वही है, कहानियां बदल गई हैं, स्क्रीन बदल गई हैं, लेकिन इमोशंस, म्यूजिक और फिल्मी मैजिक आज भी वही है। तो बस इसी मैजिक और म्यूजिक का टाइम हो गया है और थोड़ी ही देर में हम हाजिर हैं आपके अनुरोध पर आपके गाने सुनाने के लिए, ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: शब्दों की मुलाकातें, गीतों की बरसातें, दिलो दिमाग को रखती है तरोताजा। 100.3 FM की ये सौगातें।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।
0: आपका साथी, आपका दोस्त, रेडियो पिंक सिटी, सुनिए रोज। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात

0: मुझे आज भी याद है कॉलेज का वो दिन और रोहन से वो पहली मुलाकात।
1: ये पहली मुलाकात की मीठी सी बेखुदी।
0: कितना चुप चुप सा रहता था उन दिनों, लेकिन उसकी आंखें कितना कुछ बोला करती थी, मानो कुछ कहना चाह रही हूँ। और मैं भी तो खोई खोई सी रहती थी।
1: अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल।
2: इश्क में कुछ और रोमांस खोलते, रोमांटिक सॉन्ग्स ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम।

0: only on 100.3 FM. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: Hey, hello, hi, Pink City, goody goody vibes with me, Ajay Vasundhara, और आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM. और अब टाइम हो गया है आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट का, आपके अनुरोध पर. जी हाँ, यहाँ हम नहीं, आप डिसाइड करते हैं कि क्या बजने वाला है. तो अगर आपका भी कोई फेवरेट सॉन्ग है, कोई स्पेशल डेडिकेशन, या बस मूड बना है अपनी पसंद का गाना सुनने का, तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और डायल कीजिए 2200700 2200800 हमारे स्टूडियो नंबर है. 0141 जयपुर एसटीडी कोड लगाना ना भूलें. तो पिंक सिटी रेडी हो जाओ अपनी प्लेलिस्ट, अपनी वाइब्स और अपनी फीलिंग्स को ऑन एयर लाने के लिए. स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.

तो हमारे पास हमारे शो की आपके अनुरोध से पर की दो रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, जिसमें से पहली रिक्वेस्ट जो हमसे की है वो की है शशि बेनीवाल जी ने, जो सुनना चाहती हैं सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, विश्वात्मा फिल्म का ये गीत है साधना सरगम की आवाज़ में। और जो अगली रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, फोजिया जी ने हमसे ये रिक्वेस्ट की है और वो सुनना चाहती है मुझे भूल जाना फिल्म तकदीर से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। तो लीजिए, तो बड़े ही प्यारे से टैक्स आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: मुझे भूल जाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, शो ऑन है आपके अनुरोध पर, जहां आप बताते हैं गाने और हम उन्हें प्ले करते हैं। और फिलहाल जो दो रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं, राहुल और अमन जी सुनना चाहते हैं एक लड़की को देखा तो, फिल्म अ लव स्टोरी से कुमार सानू की मेलोडियस वॉइस में। और अगली जो फरमाइश हमसे की है वो की है अहमद मंसूरी साहब ने, वो सुनना चाहते हैं तुमसे बिना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। सुनेंगे आप ये दो बड़े ही प्यारे से ट्रैक्स आपके रेडियो सेट्स पर।

संगीत की बरसात हो या इन्फॉर्मेशन की सौगात, बिना रेडियो पिंक सिटी के बनती नहीं है बात। जयपुर के दिल की धड़कन 100.3 FM सुना क्या?

आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM विद मी आरजे वसुंधरा। और अब जो हमारे पास में आपके अनुरोध पर जो दो फरमाइशें आई हैं वो हमसे की है प्रमोद कुमार जी ने विद्याधर नगर से। वो सुना चाहते हैं तुम अगर साथ देना, देने का वादा करो, हमराज फिल्म का ये गीत है। और नेहा जी सुनना चाहती हैं हमें जब से मोहब्बत हो गई है फिल्म बॉर्डर से। दो बड़े ही प्यारे से गाने जो हैं अभी आपके रेडियो सेट्स पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आज कुछ तो खास है, कुछ तो बातें साथ में। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 2207002008000 हमारे स्टूडियो नंबर्स हैं। कॉल करें और अपने अनुरोध हम तक पहुँचाएं।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: मैं भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
1: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
0: तुम्हीं ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
1: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
2: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
3: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे, ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलयकुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
3: Hey, do you want to hear this?
4: जयपुर के दिल की धड़कन, 100.3 FM, 100.3 FM।
5: आप सुन रहे हैं 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी, मेरी यानी आजी वसुंधरा के साथ। और जो अगली दो अनुरोध हम तक आए हैं वो हमसे किए हैं राम सिंह जी, ददनपुरा चाकसू से उन्होंने हमें कॉल किया है और वो सुनना चाहते हैं दिल किसी ने ऐसा मेरा तोड़ा। अमानुष फिल्म का ये गीत है। और जो अगली फरमाइश हमसे की है जौहरी बाजार से नारायण पटेल और शांति पटेल जी सुनना चाहते हैं ड्रीम गर्ल से टाइटल ट्रैक ड्रीम गर्ल। लीजिए सुनते हैं ये दो बड़े ही प्यारे से गाने ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: दिन बाद मिलती है इस संडे की सौगात, सबके साथ दिल की सारी बात। कुछ पल अपने लिए, कुछ पल अपने अपनों के लिए। रेडियो पिंक सिटी देता है आपके एहसासों को जुबान और संडे को बनाता है और खुशनुमा। तो ट्यून कीजिए ना रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, हाँ कुछ तो बात है, कुछ तो बात है।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: Stay tuned to 100.3 FM, Radio Pink City.
1: So listeners, इस आखिरी गाने के साथ वक्त हो गया है आपको टाटा बाय बाय कहने का. खुश रहें, खुशहाल रहें, अपने आसपास सभी का ख्याल रखें और थोड़ा थोड़ा प्यार बेजुबानों पर भी लुटाते रहें और साथ में सुनते रहें रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM. दिस इज वसुंधरा साइनिंग ऑफ. हैव एन अमेजिंग वीकेंड. एंजॉय.

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में ₹1 की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर ₹80.09, गाजियाबाद और नोएडा में ₹88.70 और गुरुग्राम में ₹85.12 हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में ₹2 की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी

0: لودین سمک تو
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। प्रकाश मेहरा के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में गुलशन बावरा की रचना आपने सुनी। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हाथ की सफाई फिल्म का ये गीत आपने सुना।

0: अख्तर रोमानी की लिखे इस गीत की तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे दो गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म थी हसीना मान जाएगी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

आप सुन रहे थे दयावान फिल्म का गीत, पंकज उदास अनुराधा पौडवाल के युगल सुरों में। अजीज काजी का लिखा यह गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। साजन फिल्म का यह गीत है पंकज उदास की आवाज में, समीर के बोल, नदीम श्रवण की तर्ज।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म नाम में आप सुन रहे थे पंकज उदास और साथियों को। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। मेला फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजों में ये युगल गीत आप सुन रहे थे फिल्म रल्ला वारिस से। अनजान के बोलों को सुरों में ढाला था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओ, यादों की महफिल इस कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। श्री मोदी की 2018 में स्वीडन की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भर्ती परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और गलत उत्तर कुंजी को लेकर बार बार याचिकाएं आने को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को कहा है कि वे कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ IAS अफसरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन करे। ये कमेटी इस विषय पर गहन परीक्षण कर भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए SOP बनाने के साथ ही अन्य सुधारात्मक उपाय भी निर्धारित करेगी। अदालत ने कहा कि कमेटी ये भी परीक्षण करेगी कि क्या ऐसे प्रश्न और उत्तर कुंजी तैयार करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल द्वितीय को लेकर दायर 45 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति PP चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्र कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बीच विकास कार्य प्रभावित होते हैं, आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं, पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शिक्षा, बैंक तथा सरकार के संबंधित विभागों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी ने कल अजमेर से 3 नई नियमित साप्ताहिक ट्रेनों का शुभारंभ किया। इनमें अजमेर बांद्रा साप्ताहिक एक्सप्रेस, अजमेर दौंड साप्ताहिक एक्सप्रेस और अजमेर बांद्रा एक्सप्रेस शामिल है। मंडल रेल प्रबंधक राजू भोतड़ा ने ये जानकारी दी। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और उससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। आज ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। नागौर के अजमेर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हुई एक दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा चकढ़णी गांव की सीमा पर एक बस और कार की आमने सामने की टक्कर से हुआ। कार सवार सभी यात्री बुटाटी के पास संत चतुर्दास महाराज के मंदिर जा रहे थे। प्रधानमंत्री

0: पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओं,

हवाओं पे लिखे हवाओं के नाम ये गीत जो हैं, जब छम से विविध भारती के जरिए आपके आंगन में आते हैं तो आपको कैसा लगता है, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं श्रोताओं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र के हम सफ़र साथियों को नमस्कार, और आज की इबारत बदलते संचार माध्यमों में अपनों संग रिश्ते समेत रखने का जिक्र है। संचार बदलते आयामों ने दूरी को नज़दीक कर दिया है। कभी जो काल्पनिक उड़ान भर मन में याद कर प्रियतम प्रियसी के नज़दीक का आभास दिलाते थे, वो आज इंटरनेट युग में साक्षात रूबरू हो जाते हैं। ये वरदान भी है, मगर इन भौतिक सुविधाओं में वो विरह वेदना नहीं महसूस होती जो पहले होती थी। बहुत रोमांचक और प्रासंगिक इबारत है, संगीतमय सफ़र संग प्रश्न पहेलियों का इंतज़ार रहेगा। इनकी एक बात जो है श्रोताओं कि जो विरह वेदना है वो भौतिक सुविधाओं में नज़र नहीं आती, तो ये लाइन जो इन्होंने लिखी है ये बड़ी गहरी है, इसके कई मायने हो सकते हैं। वैसे हाँ, ये बात तो है कि जब हम दूरसंचार की बात करते हैं या टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मिनटों में लोगों से बातें हो जाती हैं, लेकिन शायद दिल की वो धड़कन कहीं महसूस नहीं होती या कहीं खो सी गई है जो जब खत आते थे उनमें रहती थी। बशर्ते जो बातें होती थी वो तो बड़ी कम लिखी होती थी, लेकिन जो दिल में एक वेदना सी महसूस होती थी वो कहीं गहरी होती थी। तो ऐसी कोई चिट्ठियाँ अगर आपने सहेज रखी हैं तो आप हमें

लगा सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने, वैसे तो बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को पहचाना है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है मेरे पिया गए रंगून और लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, और बाकी गीतों को भी देखेंगे। जी हाँ बिल्कुल देखेंगे बाकी गीतों को भी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की बातें गीतों के होने वाली हैं, कि कैसे गीत हमारी हर बात को हमारे अपनों तक पहुंचा देते हैं। हमारे दिल की बात कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम गुनगुनाते हैं किसी और के लिए, मगर सुनते वक्त सबसे ज़्यादा खुद महसूस करते हैं। गीतों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो दूर बैठे इंसान को भी हमारे दिल का हाल बता देते हैं। किसी को अपना कहना आसान नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर अपनी मोहब्बत गीतों में छुपा देते हैं। एक पसंदीदा गीत, कई बार पूरी कहानी इसमें छुपी होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल के बिना जीना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल है, ये दुनिया का अजूबा रिश्ता, ये ज़िंदगी का सफ़र, आज रेडियो से मोबाइल के बिना चैन कहाँ। और एक और श्रोता ने लिखी है कि जो आज की इबारत है वो संभावित गाने पालकी में होके सवार चली, और फिर इन्होंने और भी बहुत सारे जो गीत हैं उन्हें चुना है। तो हम देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत बजते हैं इस कार्यक्रम में। वैसे जो आज हमारी प्लेलिस्ट है वो आपकी प्लेलिस्ट से, मैं बताऊं श्रोताओं, कि लगभग मैच कर रही है। और कुछ श्रोता ऐसा भी लिख रहे हैं कि भाई एक या दो गीत हैं उनके लिए क्या परेशानी उठाई जाए। जी हाँ, ऐसी बात भी आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि वायरलेस उपकरण जैसे फ़ोन और रेडियो से उठती तरंगों की बातें होंगी। रेडियो तो पहले से ही था, उसमें भी बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन आज हाथ में एक छोटे से फ़ोन ने सभी कुछ एक मुट्ठी में कर दिया है। साधारण कॉल से लेकर वीडियो कॉल पर देश विदेश में बैठे परिजनों से बातचीत, रेडियो का जुड़ाव, मनोरंजन, दुर्लभ जानकारियों का जो वरदान दिया है उसका कोई हिसाब नहीं। ये सब तकनीक और आधुनिकता का दिया हुआ तोहफा है बदलती दुनिया को। जी हाँ, ये जो आधुनिकता है जो बातचीत के दरमियान हमें देखने को मिलती है, ये आपको कैसी लगती है ये आपको बताना है। साथ ही अगर आप एक बात बताना चाहें तो ज़रूर बताएं कि जब कोई नई चीज़ आती है हमारे घर में तो बड़ा कौतूहल होता है, बड़ा रोमांच होता है। तो एक ज़माने में जो टेलीफोन था वो, यानी कि जो वायर वाला टेलीफोन था वो आया, तो आपको कैसा लगा अगर आपके घर आया? या फिर अगर हम मोबाइल की ही बात करें तो आपने पहला फ़ोन किसको लगाया?

दास्तां कैसी भी हो, श्रोताओं, प्यार की हो, तलखियों की हो, गुस्से की हो या फिर मुस्कुराहट की हो, कोई सुनने वाला होगा तो ही तो सुनाई जाएगी। तो ये गीत जो था दिल की ऐसी ही बातों का मर्म हमें समझा रहा था। कैफी आजमी की ये रचना थी, हेमंत कुमार की तर्ज थी। फरार फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस गीत के पहले दो दूनी चार फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गुलजार के बोलों को सुर में ढाला था हेमंत कुमार ने, और इस गीत की जो डिटेल्स थी यानी पहले गीत की, वह हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीतों के बारे में प्यार की दास्तान तुम सुनो तो कहें, हमने सनम को ख़त लिखा, मेरे पिया गए रंगून, और तमाम ये गीत इन्होंने बताए हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि रेडियो के इन जादुई तरंगों का सफ़र सिर्फ शब्दों और सुरों तक सीमित नहीं, बल्कि ये इंसानी जज्बातों का एक ऐसा बहता हुआ दरिया है जो सरहदों के सारे नक्शे मिटा देता है। जब हवा में तैरती हुई कोई धुन किसी उदास दिल को छूती है तो तन्हाई के अंधेरे पल भी उम्मीद की रोशनी से जगमगा उठते हैं। ये तरंगें सिर्फ आवाज़ नहीं पहुंचाती, बल्कि दूर बैठे अपनों की धड़कनों और उनकी मुस्कुराहटों को हमारे बेहद करीब लाती हैं। इस बेतार की दुनिया में ना तो वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही दूरियों का कोई डर। यहाँ तो बस सुरों की एक ऐसी महफिल सजती है जहाँ हर कोई बंधा चला आता है। सच ही तो है, टेक्नोलॉजी भले ही कितनी भी बदल जाए, लेकिन रेडियो तरंगों की लय पर बहती यादों की ये अनमोल विरासत हमेशा हमारे दिलों को इसी तरह गुदगुदाती रहेगी। वैसे रेडियो पर किस गीत का आपको इंतज़ार रहता है श्रोताओं, कि ये गीत बजे तो आपको बहुत अच्छा लगे, और किसी खास मौके पर कौन सा गीत आप सुनना पसंद करते हैं। वैसे न सिर्फ रेडियो की ही बात है, अगर हम दूरसंचार की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो टेलीविजन है वो भी आ जाते हैं। कुछ एक नगमे हैं जिनमें से कुछ आज हमने लेने की कोशिश भी की है। तो टेलीविजन की क्या यादें हैं, यानी टीवी दूरदर्शन की क्या यादें हैं, ये आप हमसे बता सकते हैं। वैसे अगर आप बताना चाहें तो ग्रामोफोन की बातें भी बता सकते हैं, जो रिकॉर्ड्स आते थे उनकी बातें भी बता सकते हैं, सीडीज़ की जो बातें हैं वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हवाओं की तरंगों पर ही हमारे दिल के करीब आ जाती हैं। एक हमारे और श्रोता लिखती हैं, सुहाना सफ़र के कुछ शब्द और संभावित गाने, दूरी, हवाओं, पालकी, परदेसियों, प्यार दास्तान, देहरादून, रंगून, गम उठाने, ख्याल, मन का नगर, मतवाला, दूरी न रहे कोई, कुछ एक गीत इनके नहीं मिलते, बाकी तो लगभग सभी मिल ही रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सा गीत आ जाता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज प्रोमो पोस्ट बहुत देर से आई, सुबह 3 बजे नींद खुली, तब से अब तक 5-6 बार पोस्ट ढूंढता रहा, अभी 7:30 के लगभग कामयाब हुआ। तो ये सुनकर, ये जानकर भाई आपकी नींद ख़राब तो ज़रूर हुई नींद आपकी, लेकिन विविध भारती से आपका जुड़ाव इस बात को दर्शाता है, और आपने बड़े ही प्यार से ये बात हम तक लिख भेजी है। वैसे इन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हमने सनम को ख़त लिखा, कभी बेख्याल होकर यूं ही छू लिया, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, गम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊँगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात। इस गीत को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है श्रोताओं, और इस गीत की क्या यादें हैं ये आप बताइए, किन पर फिल्माया गया है।

फिल्म शक्ति का ये प्यारा सा गीत श्रोताओं जो स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। वैसे एक सवाल आपसे पूछने का जी चाहता है कि क्या कोई ख़त ऐसा भी था जो आया नहीं और आज भी आपको उस ख़त का इंतज़ार है, या फिर इंतज़ार ख़त्म हो चुका है? यानी कभी कभी हम दिल हार जाते हैं कि भाई नहीं, अब तो ये ख़त नहीं आएगा या अब तो ये मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जब अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो आप क्या करते हैं? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि किसी के मैसेज का या किसी की बातों का हमें इंतज़ार रहता है, ना वो ख़त आता है ना वो मैसेज आता है, तो क्या आप उदास हो जाते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि भाई ये ज़िंदगी है और आगे यूं ही चलती रहे? यानी आप गमगीन होते हैं या फिर गमों के समय भी मुस्कुराते हैं? वैसे हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि गीत हमारे मित्र हैं, हवाओं की पालकी पर सवार रेडियो से जो गीत बजते हैं वो हमारे सुख दुख के गहन साथी हैं। जीवन में जब प्रेम आया तो इन गीतों में विस्तार खोजते रहे और आश्चर्य कि हमें गीत में वो सब मिला जो हम मन से कहना चाह रहे थे, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, वो रेडियो से झरते इन गीतों में था। सुरों का ऐसा साज ये गीत कि अब हमारे अस्तित्व से जुड़ गए हैं, ये मन को लूट लेते हैं। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, आज भी इस गीत को सुनती हूँ तो मन किसी अनदेखी अनजानी दुनिया में पहुँच जाता है जहाँ कोई नहीं होता सिवाय इस गीत के। एक सवाल आप हमें बता दें श्रोताओं कि फिल्म आरती का एक गीत है जिसमें जो ये गीत जब शुरू होता है तो ये ग्रामाफोन के सेट पर नज़र आता है, यानी इसकी शुरुआत ग्रामाफोन के सेट पर होती है। तो आप इस गीत को अगर पहचानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि मेरे पिया गए रंगून, चिट्ठी आई है वतन से और परदेसी, तुम कहाँ चले गए। फिर इन्होंने जो कुछ गीत लिखे हैं शायद वो गीत बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते हैं, तो इसके लिए तो ये ज़रूरी है श्रोताओं कि जो इबारत होती है ना उसे आप दो तीन बार अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब हम स्कूल में एग्ज़ाम देते थे, कॉलेज में एग्ज़ाम देते थे, तो जब हमारे सामने सवाल आता था तो यकायक लगता था कि नहीं भाई इसका तो जवाब हमें नहीं आता है, लेकिन फिर ये होता था कि मन होता था कि भाई शांत बैठ जाओ और इसे कई बार, यानी कि कम से कम एक दो बार तो जैसा समय रहे उस हिसाब से पढ़ लीजिए, तो फिर ये समझ में आ जाता था कि नहीं ये तो ज़रूर उत्तर हमें आता है या आंसर हमें आता है। तो ऐसा ही है ये टेक्स्ट भी, हमारी इबारत भी, ये मज़मून भी ऐसा ही है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन से नगमे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है सुरीला सफ़र में कुछ शब्दों गीत बज सकते हैं, जैसे दूरी हवाएं, परदेसी, पालकी, रंगून, प्यार की दास्तान, सलाम मेरे पिया गए रंगून, दूरी न रहे कोई, तुम इतने करीब आओ, दूरियां नज़दीकियां परदेसियों से, इन हवाओं इन फिजाओं में लिखे जो खत तुझे, बहुत सारे गीत हैं। तो एक और श्रोता लिखती हैं आज के शब्दों से पता लग रहा है कि दूरी की बातें होंगी और गाने भी बजेंगे। जी हाँ, जहाँ तक दूरी की बातें हैं श्रोताओं, जब दूरियाँ नहीं होंगी तो नज़दीकियों का क्या मज़ा, इसलिए दूरियाँ हैं तो नज़दीकियाँ हैं, और जब नज़दीकियाँ हैं तो उन नज़दीकियों को हम बनाए रहें, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इनमें दूरियां ना आ पाएं। ठीक ऐसे ही जैसे हमारी विविध भारती है, कभी ना नाराज होती है ना कभी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बस श्रोताओं को लेकर साथ हम सफ़र की तरह चलती रहती है। तो ये आगे लिखती हैं कि दूरी की बात होगी और गाने भी बजेंगे, जब कोई हमसे दूर होता है पर दिल के करीब होता है, और प्रदेश में होकर थी जो दिल को जोड़ रखता है वो फ़ोन होता है, हम फ़ोन पर बातें करते हैं, दिल की बातें करने से मन हल्का हो जाता है, हाल चाल भी पता चलता है। लेकिन एक बात यहाँ ये है श्रोताओं कि जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी जो आज जो विश्व दूर संचार दिवस यानी टेलीकम्युनिकेशन डे है, तो ये जो दूरियां हैं यकीनन इन संचार माध्यमों से कम तो हुई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये कम हुई हैं या फिर और बढ़ गई हैं? आपको संगीतकार और अदाकारा बताने हैं।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलयकुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141256969 पर।

यकीन मानिए श्रोताओ, जब रेडियो तरंगों की ताल पर बजते हैं तो जाने कितनी ही जो अपनी यादें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, दिल में अंगड़ाइयाँ लेती हैं, और जाने कितनी सारी बातें जो होती हैं जहन में ताज़ा हो जाती हैं। ये गीत चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, बेशुमार हो, दिल के बेहद करीब होते हैं। वक्त के सांचे में ढले ये गीत नायाब हैं श्रोताओ, जिन्हें हम और आप इनकी कीमत को बिल्कुल चुका नहीं सकते, हाँ इन्हें प्यार ज़रूर दे सकते हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दें कि बरसात की रात फिल्म का ये गीत था, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वीनस क्वीन मधुबाला पर फिल्माया गया, भारत भूषण भी नज़र आते हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं रोशन की तर्ज है। वैसे हमने आपसे शुरुआत में ये कहा था कि आज के गीतों की कड़ी में कुछ एक ख़ास बात है, इसका जवाब अब तक मुझे नज़र नहीं आया है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि क्या आप इस कड़ी को या इस बात को पहचान पाते हैं क्या कि आज किस तरह के नगमे हैं। आज की भारत संचार माध्यम से जुड़ी लगती है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के जरिए पत्रों का आदान प्रदान, बाद में पोस्ट डॉक खाने में चिट्ठियां पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल, उसके बाद डाकिये का साइकिल पर चिट्ठियां बांटना, बाद में टेलीफोन पेजर का इस्तेमाल शुरू हुआ। सन 2000 से तो मोबाइल का ऐसा ज़बरदस्त दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। पत्रों की जगह मैसेज टेक्स्ट ने ले ली, कुछ ही सेकंड में एक दूसरे से जोड़ देती है, चाहे कितना भी संचार क्षेत्र में हम तरक्की कर लें, लेकिन जो मज़ा पत्र चिट्ठी लिखने में आता है वो मज़ा मोबाइल में बातचीत में या टेक्स्ट में नहीं आता। श्रोताओं, ये बात ज़रा सोच कर देखिए कि अगर

0: मिनट में या कुछ सेकंडों में हमारे तक किसी की बातें पहुंच जाती हैं या हमारी बातें किसी तक पहुंच जाती हैं, तो इतना ही समय लगता है रिश्ते जोड़ने में भी और इतना ही समय लगता है रिश्ते तोड़ने में भी। तो क्या इन रिश्तों के बीच कुछ जो मकाम है या कुछ समय जो है उसकी उसका महत्व है? यानी जो चिट्ठियां होती थीं वो थोड़ी देर से पहुंचती थीं, लेकिन ये जो मैसेज होते हैं तुरंत दोस्ती और तुरंत बिल्कुल कट्टी बट्टी हो जाती है। तो क्या आपकी आजकल किसी से नाराज़गी चल रही है यानी कट्टी हो गई है? कोई आपकी सहेली, कोई आपका दोस्त आपसे बातें नहीं कर रहा, तो बस मौका है जल्दी से मना लीजिए, क्योंकि आप भी इसी संचार से जुड़े हुए हैं और तुरंत तुरंत मैसेजेस भेजने में बिना सोचे समझे भी हम कई बार मैसेजेस भेज देते हैं, तो इस पर भी ज़रा सोचने की बात है। एक और श्रोता ने लिखा है, दूरी चाहे कितनी भी लंबी हो क्यों ना, भावनाएं हमेशा अपने रास्ते खोज लेती हैं। कभी हवाओं की पालकी पर परदेसियों के पैगाम आते हैं, तो कभी बेतार तरंगों पर बहते दिलों को जोड़ देते हैं, बहते गीत दिलों को जोड़ देते हैं। रेडियो के सुर लहरियाँ केवल संगीत नहीं लाती, वो अपने साथ यादों की खुशबू, अपनापन और जीने का हौसला भी लेकर आती हैं। हमने आपसे पूछा था आरती फिल्म का वो कौन सा गीत है श्रोताओं जो ग्रामाफोन पे बजता हुआ जिसका शुरुआती मुखड़ा नजर आता है, यानी जो इंट्रोडक्शन गीत का है वो। एक और श्रोता ने लिखा है कि हाथ के छोटे से फोन में अब दुनिया समाई हुई है, एक मिनट के लिए फोन नहीं मिलता या किसी वक्त बंद हो जाए तो बड़ी बेचैनी सी होती है। कोई भी विशेष समाचार आना, किसी को पेमेंट करना हो या किसी का पैसा मोबाइल पर आने की न्यूज हो, किसी का फोन आना हो, ये बहुत मुश्किल हो जाती है बगैर तार के, बगैर किसी बिजली कनेक्शन के, इस छोटे से फोन से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमयी इबारत की इबादत से निकले शब्द में दूरी चाहे रंगून देहरादून हवाओं पालकी सवार चंचल नैन और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो श्रोता हैं वो टेक्स्ट को इतनी खूबी से पढ़ते हैं और उनमें से शब्दों का चयन करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि संचार साधनों में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने पुराने साधनों को लगभग मानव स्मृति पटल पर केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना दिया है। प्राचीन काल में संदेश जब कपड़े पेड़ों के पत्ते पर लिखकर भेजे जाते थे, इस प्रथा में जो संदेशवाहक पत्र आदि लेकर आता था कहीं कहीं पर इस कार्य में प्रशिक्षित पक्षियों बहुधा बाज कबूतर से भी इस कार्य को अंजाम दिया जाता था। कोई एक ऐसी फिल्म आपको याद आ रही है क्या जिसमें कबूतर जो हैं वो पत्र लेकर जाते हैं? मुझे तो कई सारी फिल्में याद आ रही हैं और एक फिल्म जो दिलीप कुमार साहब की है उसमें तो इसे बखूबी दिखाया गया है। अगर आपको ये फिल्म याद आ रही है तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज समय बदल गया है, देश विदेश में बसे अपने लोग वीडियो कॉल की तरंगों पर सवार होकर पल भर में हमारे सामने आ जाते हैं। मुस्कानें, आवाज़ें और भावनाएं स्क्रीन पर पार होकर भी दिल को छू जाती हैं। तकनीक ने दूरियों को छोटा कर दिया है पर रिश्तों की मिठास वही पुरानी बनी रहे। सच तो ये है कि प्रेम, अपनापन और यादें किसी तार या सीमा के मोहताज नहीं होती, वो बस महसूस किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो पर बजते किसी पुराने गीत की मधुर खुशबू जो मन के किसी कोने में हमेशा जीवित रहती है। ऐसी जो खुशबुएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, उसको जीवित ही रहने दें, इसे दर्द ना बनाएं, क्योंकि दर्द भी गीतों में समाया है जो कहीं कहीं हमारे दिल में दस्तक देता है।
1: Oh,

मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जितेंद्र पर फिल्माया गया, मोहम्मद रफी की आवाज़ थी, हजरत जयपुरी के बोल थे, संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी में एक बहुत ही काव्यात्मक शब्द है चंचल नैन, जिसका अर्थ है अस्थिर या चुलबुली आंखें, रेस्टलेस और फ्लिकरिंग आईज। ये आमतौर पर खूबसूरती, चंचलता और आकर्षण को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये शब्द न केवल हिंदी साहित्य बल्कि बॉलीवुड गानों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। चंचल नैन वाले कुछ प्रसिद्ध गाने चंचल नैन, नजरें मिली, दिल धड़का, कुछ एक गीत इन्होंने पसंद किया है। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पैराग्राफ में ही कई चर्चित गानों के मुखड़े लिखे नजर आ रहे हैं, यानी दिखाई दे रहे हैं। बेतार के तार रूपी ध्वनि तरंगों पर बजते हुए प्यार की दास्तान लिए आज सुंदर गाने सुनने को मिलेंगे, जिन्हें सुनाने कोई मतवाला VBS के स्टूडियो में आने वाला है। गानों को सुनकर ऐसा महसूस होगा कि दूरी न रहे कोई, बिल्कुल करीब से सुन रहे हैं और प्यार से दिल से महकती खुशबू महसूस कर रहे हैं। उनके ख्याल आए तो बस दीवाना बनाकर चले गए। उम्मीद है आज रेडियो पर बजते हुए गाने सुनने को मिलेंगे। और कुछ गीतों को इन्होंने पसंद किया है, यानी कि अपनी जो बात है उसमें लिखा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी प्यार की दास्तान, गम उठाने के लिए लूटी कोई मन का नगर, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। क्या बात है श्रोताओं। वैसे अगर हम ये कहें कि हमारे कुछ श्रोता भी इबारत लिखने में काफ़ी अच्छा एक मुकाम रखते हैं, तो ये कहने में तो कोई गुरेज नहीं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, सुरीले सफ़र में आज हम रेडियो की सुरीली तरंगों के साथ गीत संगीत का आनंद लेंगे। संगीत से हर किसी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि जीवन के महत्वपूर्ण पल संगीत से होकर गुजरते हैं, जब चाहे जैसा चाहे मूड जो बदल देता है। संगीत जब भी हम बेहद खुश होते हैं तो दिल से निकलता है, संगीत जब कभी उदास होते हैं तो खुश कर देता है, पलों में भावुक कर देता है और मन में अपने संजोने के लिए इन्होंने बहुत सारे जो आगे और भी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितनी मेहनत करते हैं, कितना सोचते हैं कि ये कार्यक्रम है इसमें किस तरह से शिरकत की जाए। और इन्होंने भी बहुत सारे गीत जो हैं वो चुने हुए हैं और ये गीत मेल खाते हैं यकीनन। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो आपने बहुत अच्छी लिखी और आपके लिखे पोस्ट या कहे गए वाक्य हमेशा दिल को छू जाते हैं, यही सब कारणों से हम सब के तार विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और आपकी भी बातें बहुत अच्छी होती हैं श्रोताओं, जिससे हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि दूरी की धुंध में लिपटे वो पुराने दिन आज भी रेडियो की धीमी सरगम बनकर दिल के किसी कोने में बज उठते हैं, जब शाम में इतनी तेज़ नहीं भागती थी जब शामें इतनी तेज़ नहीं भागती थी और इंतज़ार में भी एक मिठास होती थी, किसी अपने का सलाम हवाओं की पालकी पर बैठकर आता था, कभी ख़त बन कर तो कभी किसी फरमाइशी गीत की आवाज़ में, वो छोटा सा रेडियो जिसकी जाली पर उंगलियां फेरते हुए हम जाने कितनी दूरियों को छू लेते थे, तरंगों पर तैरते गीत कभी उदास रातों का सहारा बनते तो कभी भीगी आँखों में किसी बिछड़े चेहरे की रोशनी जगा देते। ये गीत उन परदेसियों के नाम बस इतना सुनते ही दिल की कनों में पुरानी गलियां उतर आती थीं, लगता था जैसे देहरादून से रंगून तक फैली दुनिया एक ही धुन में सांस ले रही है। अब वीडियो कॉल में चेहरे तो दिख जाते हैं।

0: सुंदर सी अभिनेत्री अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था, गूंज उठी शहनाई फिल्म का। और आप अगर संगीतकार बता दें तो क्या ही बात है। एक श्रोता ने लिखा है, दूरी कितनी भी क्यों ना हो, दूर दूर बिखरे हुए रेडियो मित्र एक परिधि में आ ही जाते हैं। जब विविध भारती से सुरीला सफर शुरू हो जाता है, ध्वनि तरंगों की पालकी से आता हर परदेसी अपना सा लगने लगता है और अपनी दास्तां बयां करता है। और धन्यवाद भी इन्होंने लिखा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं, दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिलों की आवाज और अपनापन कभी नहीं रुकता। हवाओं, तरंगों और सुरों के सहारे भावनाएं एक जगह से दूसरी जगह तरंगों से पहुंचती रहती हैं, कभी यादें बनकर कभी संदेश बनकर। रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि उन अनकहे एहसासों का साथी है जो लोग एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। बदलते समय में चिट्ठियों की जगह वीडियो कॉल ने ले ली है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट आज भी वही है। अपनापन, यादें, संवाद, दूरियों के बावजूद रिश्तों की नज़दीकी और सुरों की मिठास को बहुत खूबसूरती से महसूस रेडियो से किया जा सकता है। जी हाँ, और ऐसा ही टेलीफोन से भी होता है।
1: रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

शुदा फिल्मी दुनिया के एक बड़े दिग्गज सितारे थे जो रेडियो से ताल्लुक रखते थे। क्या आप उन सितारे को पहचानते हैं? तो हमें जल्दी से लिख भेजिए।

पतंगा फिल्म का ये गीत और जो टेलीफोन आया वो रंगून से आया। शमशाद बेगम चितलकर की आवाजें थी। श्रोताओं, एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे दूर हो या पास हो, विविध भारती मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो, जहां हर रोज हवाओं पर लिखा जाता है सुरीला सलाम हम अनजान श्रोताओं के नाम। फिर वो बरसात की भीगी रात हो या दिन की फुहार, जिंदगी भर भुलाई नहीं जा सकती। सुरों की बरसात जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। जब उसे रूबरू देखा दिल बोल उठा, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, रेडियो से कर गया अजब इशारे, बस और कुछ नहीं कहना, दूरी न रहे कोई, तुम रेडियो के इतने करीब आ जाओ। आइए मिलते हैं 1 बजे, सुरीला सफ़र की बागडोर संभाल रही हैं, इन्होंने लिखा है हमारा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। और हाँ, ये बात तो ज़रूर है, आरती फिल्म का ये गीत है जिसे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना, और ये गीत था कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, जो रिकॉर्ड पर शुरू होता है। और आज जो कड़ी थी वो ये थी कि हमने रेडियो माइक और टेलीविजन स्क्रीन के गीत चुने थे, ग्रामोफोन भी आरती फिल्म में दिखाई दिया, टेलीविजन स्क्रीन का जो गीत है कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, ये आज हम नहीं आपको सुनवा पाए। अगले कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि आप तक ये गीत ज़रूर पहुँचे।

हमारी एक श्रोता ने लिखा है, श्रोताओं की देखना है आपके टेक्स्ट से मेरे कयास लगाए हुए गीत कितने मिलते हैं, उसी हिसाब से मैं अपने आप को मार्क्स दूंगी। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, तो भाई आप अपने गीत देखिए और ये भी गीत आप सुन चुके हैं तो बस मार्क्स दे दीजिए।

0: श्रोताओं नमस्कार, आज है विश्व दूर संचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। विश्व दूर संचार दिवस प्रत्येक वर्ष के 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन मानव सभ्यता के संचार के महत्व, उसकी प्रगति और उसके भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए समर्पित है। आज का युग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है यानी सूचना और प्रौद्योगिकी का युग, जहां दूर संचार ने दुनिया को एक छोटे से गांव में परिवर्तित कर दिया है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को दूर संचार के महत्व के प्रति जागरूक करना है, डिजिटल विभाजन को कम करने के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

दूर संचार का अर्थ है दूरी पर स्थित व्यक्तियों का या स्थानों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना। पहले के समय में संदेश पहुंचाने के लिए दूत, कबूतर या डाक का सहारा लिया जाता था, जिसमें काफी समय लगता था। परंतु आज के मोबाइल फोन, इंटरनेट, उपग्रह और अन्य आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कुछ ही सेकंड में संदेश दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है। यह परिवर्तन न केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है, बल्कि मानव जीवन को सरल और गतिशील बनाने का आधार भी है। विश्व दूरसंचार दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा की गई थी और 17 मई 1865 को इस संगठन की स्थापना हुई। दूरसंचार का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कक्षाएं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल पुस्तकालय ज्ञान को कितना सुलभ बना देते हैं। चिकित्सा के लिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों से सलाह ली जा सकती है। व्यापार उद्योगों के लिए ई कॉमर्स और डिजिटल लेन देन से

0: What is mobile number? What is your smile number?
1: What is your style number? Karo kya dial number?
2: हालांकि दूर संचार के विकास के साथ कई सारी चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता की समस्या, डिजिटल असमानता, ऐसी कई सारी गंभीरता से विचार करने वाली बातें भी समक्ष आती हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तकनीकी सुविधाओं का अंतर एक बड़ी चुनौती हमारे समक्ष है, इसे भी दूर करना है। तो इन्हें दूर करने के लिए बहुत सरल सी बात है कि हम अपने आप को साइबर अपराधों से बचा कर रखें। यानी हमारे पास अगर कोई OTP नंबर पूछता है तो वह हम उसे ना दें, या फिर हमारी कोई अपनी गोपनीय बातें या गोपनीय जानकारी सभी के समक्ष प्रस्तुत ना करें। इसके साथ ही और भी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जिनके तहत हम हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस हमें अवसर प्रदान करता है कि हम इस क्षेत्र में उपलब्धियों का मूल्यांकन कर लें, भविष्य की दिशा तय कर लें और अपने जीवन को डिजिटलाइज करके तकनीकी रूप से निर्माण कर सकें। दूरसंचार आधुनिक जीवन की धड़कन बन चुका है और यह सूचना का ही नहीं रह गया माध्यम केवल, यह बन चुका है माध्यम प्रगति का, विकास का और वैश्विक एकता का। इसके महत्व को समझते हुए विवेकपूर्ण और सकारात्मक तरीके से हमें इसका उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और अधिक जुड़ी हुई दुनिया में जीवन व्यतीत कर सकें, ऐसा समाज देना है। आज के दिन का यही उद्देश्य है।

आधुनिक तकनीकी युग में चार कदम संभल कर चलिए और चार कदम आत्मविश्वास के साथ, और जी लीजिए अपने जीवन को पूरी पूर्णता के साथ में। आज की त्रिवेणी से आज्ञा दीजिए, विधि जैन को नमस्कार।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की।

0: पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
2: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
4: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय

0: ये दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेर्पा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेर्पा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने होर्मुस जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
3: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
4: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: पूर्णिमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर के युगल सुरों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: महक कांटो की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज।
1: प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म थी गंगा की लहरें। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों।
1: आप सुन रहे थे नजराना फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था।

कपूर की आवाज में अनमोल मोती फिल्म का ये गीत था, राजन कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत का। तो मनचाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेरों पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओ, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नख़मे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं।

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी और अभिजीत गवाड़कर, राही भी यहीं से, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाड़कर की ये फरमाइश थी। मंचाई गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत।

इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आढ़िया, सौभाग्यवती भारती आढ़िया, पारस पायल, श्वेता आढ़िया और उर्वी बेन आढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओ, लेकिन अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहाँ से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती, ये फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक, और ज़िला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतज़ार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाज़त। नमस्कार।

यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला,
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।

0: अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
1: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
0: जी,
2: अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
3: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
1: आप?
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
1: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
1: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
0: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
1: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
3: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है।
1: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
3: हम निश्चिंत हुई आर्य।
2: अनसुया, देख तो वो मृगछौना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
3: हाँ चलो, इसे इसकी माँ के पास पहुँचाएं।
0: अरे अरे, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
3: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
0: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुया, चली गई।
1: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक तो यहाँ उपस्थित है
0: जी।
1: कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा छलूं या?
0: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
1: पाप?
0: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
1: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
0: अब जाने भी दीजिए मुझे।
1: क्यों जाने दूं तुम्हें?
0: पूर्ववंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
1: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
0: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूं आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
1: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
0: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
1: क्या उलझन है तुम्हारी, बताओ तो।
0: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो?
1: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
0: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
1: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
0: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। किंतु आप मेरा हाथ तो छोड़िए।
1: नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगा।
0: तो फिर कब?
1: मुझ प्यासे भंवरे को तुम्हारे अधर पुष्प का रस मिल जाए तब।
0: ये क्या कर रहे हैं आप?
4: अरे चक्री, आप अपने प्रिय से विदा ले, रात आ पहुंची है।
0: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्य गौतम इधर ही आ रहे हैं। आर्य, आप इस वृक्ष की ओट में छिप जाइए।
1: ठीक है।
4: शकुंतला, अब कैसी हो बेटी? शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
0: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताप भी कुछ कम हो गया है।
4: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
0: अच्छा,
4: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
0: हाँ चलो माँ, चलना ही होगा। अब पछताने से रोने कलपने से क्या होता है मन, जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की इस पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाले लता कुंज, विहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
1: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी चूम नहीं सका। अब इस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर गिरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
5: बचाइए, बचाइए राजन, बचाइए! यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर मंडराने लगे हैं। तपोवंती पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
1: ओ, इन राक्षसों ने फिर से उठा लिया। मैं अभी जाता हूँ।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं।
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया, ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कण्व को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और संयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया, पिता कण्व भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है कुटिया में? कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह मैं तो भूल ही गई थी, चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: अरे ओ दुष्टा, अतिथि का अपमान करने वाली संसन, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसी तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा।
1: अनर्थ हो गया, लगता है अपने बेसुतपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटा ले, तब तक मैं अर्ध का जल लेकर आती हूँ। जा जल्दी जा। हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
1: अनसुया
0: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं।
0: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
0: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
0: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
0: चलो इतना ही पर्याप्त है, उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
1: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर लें।
0: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए, बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
1: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

0: अरे ये तो दिन निकल आया, कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ए अनुसुया, उठ ना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
2: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
1: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
2: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली, और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
1: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
2: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
2: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
1: तू भी तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
2: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
1: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
2: सच?
1: हाँ।
2: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
1: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कण्व वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
2: आशीर्वाद दे रहे थे?
1: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
2: हे भगवान।
1: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
2: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कण्व को इस घटना का पता कैसे चला?
1: आकाशवाणी से।
2: आकाशवाणी से?
1: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे आकाशवाणी हुई।
3: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
2: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली, तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
1: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
2: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
1: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
4: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुँचाने के लिए तैयार हो जाए।
1: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
2: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देख तो अनुसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, ये पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है।
2: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
3: ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
2: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
2: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
3: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
3: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
2: माँ, माँ,
3: प्रियंपदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो।
2: अच्छा।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति की धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे ग्रस्तों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तात कर्म इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवन।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

0: शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल, धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष, इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।
1: प्रियंवदा, मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
2: तपोवन से बिछुड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, ये तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो, औरों ने नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणिया भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही हैं। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
1: बाबा, बाबा, बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिल लूं बाबा।
3: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
1: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो, आम के वृक्ष के अनुराग में अपनी बहन को भूलना नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या अनुसुया, मेरी सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
3: बेटी, निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप वर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
1: अरे, ये मेरा आंचल कौन खींच रहा है?
4: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
1: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख, मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे।
5: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
3: हाँ शारंग्रह, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
6: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
3: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन, हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
1: बाबा, बाबा।
3: बेटी, पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी। और देख, पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
1: बाबा।
3: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
1: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला। कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा।
2: प्रियमता आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो।
1: सखी, तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे?
3: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहाँ रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
1: अनुसुया, शकुंतला, तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी? बोलो।
3: इतनी अधीर न हो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
1: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना।
7: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी?
1: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
7: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
1: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
6: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
3: हाँ शरणकरो, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए। जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक इस समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ। यहाँ के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो।

0: कन्या सचमुच प्रायःधन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। किसी की धरोहर को सकुशल लौटा देने में कितना संतोष है।
1: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।
2: जा

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजारा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
3: क्या
0: 1993 फिल्म

0: साहिबा।
1: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
2: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
1: जी जी जी।
2: हाथ पाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है क्योंकि जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म, और एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
2: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
0: पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं, जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
2: बसेरा का भी इसी तरह था भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई,
1: हाँ,
2: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
1: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।
2: करिए।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था,
0: हाँ मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में से था ना मैं,
1: जी जी
0: सारी फिल्म में, त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सिटिंग में स्टोरी सिटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ, कोई ऐसा वो। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर किए, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूं तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो जो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट हैं, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटे भी जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था, मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटो एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम, मैं करूँगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन वलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी। हाँ। जी जी
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
1: जी जी जी
0: उन्हीं का नाम है राइटर है राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए, बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर लें, तो मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखें अगर तो ये स्टोरी आइडिया है, तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा ये आर्ट फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा
0: हाँ जब ओरिजिनल

0: बाकी कहानी आप राखी निकाल दो, बाकी जो है बहुत कम आया उसमें। तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर, मतलब कमर्शियल पिक्चर, बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं, कुछ और डालते हैं। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ
0: ये करें। तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी ही दोस्त, उनका ही करना है ये सब। तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए। तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने ज़माने में मोहब्बत की थी,
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज़ ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले लें। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आहिस्ता से कहा, बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग हैं, तेरा सोचने का, तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी हैं, उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा कह रहे हैं, बोला हाँ यार ये तो है, देख ले तू। तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में से, शुरू में जो सोच रहे थे। और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा, जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला, मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मैंने राखी जी ने ऐसे ही पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया,
0: फिर उन्होंने कहा तुम बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना,
1: हाँ,
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फलां क्यों नहीं, मेकअप रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं की
1: जी जी जी।
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया उन्होंने। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ही करूँगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा, वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी हैं,
1: हाँ हाँ
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: और असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई?
1: हाँ
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था,
1: पहली फिल्म थी आपकी,
0: पहली फिल्म, और वो कर रही हैं और हेल्प कर रही हैं इस ढंग से, वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना बोले जाओ भाई दूसरे के पास जाओ, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर, जो होना था 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से,
1: हाँ हाँ,
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे, और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे तो वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है यश जी, जैसा आपको लगे, उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन, अगली पिक्चर जो थी मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन राय जी रिलीज कर रहे थे।

0: आप क्या मौसम है, चल कहीं
1: बहुत
0: दूर
1: अच्छा,
0: निकल
1: बहुत क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कह रहे हैं। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यश जी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए,
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम डाक के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिक बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा,
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली,
1: वो जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप,
0: कुंवारा बाप मिली।

0: तो अब जब टाइम आया तो मैं गया, भैया मैंने जैसी चीज से कहा, ये जी तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा ज़रा मुश्किल होता है तुझे, बट एनी वे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी। तो मैं इससे मिलने गया, बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे। बोला करूँगा, और उसने पिक्चर ले ली। उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, ज़बरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छी गाने चले
0: बहुत। नहीं फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा,
0: करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूँगा।
1: ओ,
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था
1: गड़बड़। हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो कुछ हुआ था ऐसा।
1: हाँ, हाँ।
0: मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, ऐसा तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ,
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है। मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने, आनंद बख्शी और मजरू साहब।
1: बिल्कुल, उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर।
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है?
0: भाई इसमें सारे गाने अच्छे हैं
1: जी।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी,
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो, तो जियोम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसरों ने कह दिया था क्या हो मेरे साथ करो पिक्चर, एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था,

0: पाकिस्तान में रहता था तो भी आते जाते, यश जी के यहाँ जाना है घर पाली तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय वाय पीते गपशप मारते, भला आदमी, बहुत अच्छा आदमी था। उसे का शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था, शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलाते थे, शॉर्टी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर,
1: हाँ
0: मेरी ये कंप्लीट हो तो शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अगली,
1: हाँ।
0: वो करे तू भी कर, एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा, तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेज दे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है एक रमेश तलवार को ऐसा बोलता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली चेहरा की, उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
1: मराठी
0: मराठी में,
1: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के,
0: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
1: जी,
0: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया, तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदत फटाफट करते थे
1: जी,
0: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को, वो 6 महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस 1 महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए,
1: यस
0: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊँगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया था। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं, आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए, तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
1: वाह वाह,
0: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
1: पुरानी दोस्ती है ही,
0: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी, गुलजार पापा
1: जी,
0: सागर को सागर पापा बुलाता था, गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका और आर डी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप,
1: बाबा।
0: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं वो अजीब सा लगेगा डायलॉग एंड वो नहीं करना, तो मैं स्क्रीन प्ले लिख, स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग्स ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगेगा कि यार आपको किसी बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्होंने नहीं सुना, तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया। तो उनका नहीं, तो मेरा मद्रास की तरफ ज़्यादा था
1: आइडिया,
0: मद्रासी फिल्म की तरह ज़्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके 2-4 नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, वो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं,
1: हाँ ये कौन आए।
0: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे, अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन,
1: ओके
0: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था, उनका उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूँगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो,
1: उन्होंने ही बोला।
0: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा के साथ कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को। बोले मैं अभी फ़ोन करती हूँ, उन्होंने फ़ोन लगाया। रेखा ने कहा मैं यहाँ जू पार्लर स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
1: हाँ
0: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे पुराने किसी के देख रही थी, और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा जी ऐसा सुना लो, लंच खाना खाओगे, मैंने कहा नहीं खा के आऊँ, अच्छा 2 मिनट में मैं खा, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूँगी, मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूँगी,
1: डन हो गया,
0: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।

0: मैंने आके रमेश बैल को खबर दे दी। प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया। रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं। अब साहब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा? शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे। हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है, और ऋषि कपूर, लेकिन राखी हीरोइन थी, पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक इलस्ट्रेटेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी, हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया। सर एक प्रॉब्लम है बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चरों में उनके सामने उन्होंने मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता। मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपको आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुँच गया सुबह उनके फ्लैट पे, उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में। चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी। रोल छोटा था, 420 की। मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी। नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
1: हाँ।
0: गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा, मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊँगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ।
1: अरे बाप रे।
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊँ लोग कहें शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है।
1: हाँ।
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया।
1: ये दूसरे आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी में ही है। मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है।
1: हाँ।
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके
1: हाँ।
0: सामने?
1: हाँ।
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह। हाँ। नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे।
0: और फिर कर अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे। करूँगा तेरी। ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहाँ पे थे, और मुझे उन्होंने कहा, वहाँ पहुँचे हम तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूँगा मैं।
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया?
0: हाँ होगी। और मतलब यह है कि डेटें तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया, वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा डेटें, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून था, ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि बोलो ठीक है रॉडी, वैसे भी तू एक सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे। और फिर सब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या कब दो और दो चार चीज़ें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं?
1: नहीं, बहुत अच्छे रहे थे मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, और ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे, दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने

0: उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया, स्पेशल डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूँगा। बैठे हुए हैं, सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना।
1: हाँ
0: हीरोइनों को देखो 3-3 घंटे मेकअप के लिए बैठती है, सेट पे आओ शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी,
1: वाह वाह
0: चाहे ट्यूसडे है चाहे सैटरडे है। या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड, ट्यूसडे
1: हाँ
0: नहीं करूंगा सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना कि देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है
1: जी
0: थिंकिंग, जो है गरीबी की है।
1: जी जी जी जी
0: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ।
1: क्या
0: और
1: बात
0: शशि कपूर 2 बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहाँ आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर
1: है।
0: 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहाँ पहले शेव करते
1: अच्छा, क्लीन लुक के
0: थे
1: लिए।
0: एकदम।
1: वाह वाह वाह।
0: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते
1: और
0: हैं।
1: ऋषि कपूर की यादें?
0: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट ही करनी शुरू की,
1: हाँ
0: वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार
1: हाँ
0: मेरे, तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो तो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा।
1: हाँ
0: तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा,
1: जी
0: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूँगा।
1: जी
0: मैंने कहा ये शर्त भी मंजूर है। और वो आया आउटडोर में और उसने वहाँ शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आके रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहाँ पे, अपना गुलशन बावरा, रमेश बैल, सब ये सब, और बातचीत बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए और 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया?
1: अच्छा
0: घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे को फिल्म दिखा सकता, ऐसे नहीं ट्रायल
1: हाँ
0: रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर वोट सीन वीन सब मैं ही रीडिंग करवाता था, सब करवाता था। और एंड तक उसने जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो, तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूँगा तेरी पिक्चर,
1: बाबा
0: वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर
1: चलती
0: मैं
1: रही।
0: पालील पे आया तो साथ वाले बंगले में था वो, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है, वो क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं, बियर पिएगा? वहाँ पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहाँ बार थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बाहर बर्फ़ गिरी हुई है, और मैं ठंडी करके आया, ठंडी में कांप रहा हूँ, साले ये मर जाएगा मर जाएगा, कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा,
1: अच्छा
0: कोन्याक पी, नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता, अरे ये शराब नहीं होती। फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन भी डाला हुआ है, यश जी को मैंने सुनाया था कोन्याक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोन्याक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी।
1: हाँ
0: फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया था उसने मुझे, फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ, तो वो बुला लेता था बियर पीनी है तो मैं गर्म बियर पीता
1: अच्छा।
0: हूँ।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम छाया गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की महफिल सजेगी, हम साथ साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, मेरी बातों के संग महसूस करेंगे प्यार का एहसास। रेशमी चुनर से ढका तेरा चांद सा चेहरा,

न जाने कब से तेरे दीदार की ख्वाहिश लिए बैठा हूँ। काश हवाओं का एक झोंका एक पल को चुनर हटा दे तो ज़रा मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए।

अंतराल के बाद छाए गीत का सफर आपके संग सभी का स्वागत है। तुम्हारा साथ गर जरा सा मिल जाता तो तमाम शामें हसीन हो जाती, न कटती रातें तन्हाइयों में, चांद को यूं निहारते हुए बातों ही बातों में गुजर जाता वक्त और रात का मदहोश आलम।

उनकी उल्फत में ज़रा सी शोकियाँ हैं, नादानियाँ हैं, कुछ शिकवे हैं, कुछ शिकायतें भी हैं, मगर ज़रा मेरे दिल की मजबूरियाँ देखिए, ये मोहब्बत भी उन्हीं से बार बार करता है।

0: हटा दो।
1: एक हसीन मुलाकात के लिए जरा पैगाम भेज दूँ, उम्मीद है बहुत तेरे आने की। यूँ मेरे ख़त को किताबों में न रख देना, ज़रा उसमें लिखे जज्बातों को दिल से महसूस कर लेना। यकीनन लबों पे मुस्कुराहट तैर जाएगी और मुझे भी दिल में जगह मिल जाएगी।

0: मेरे दिल में जरा सी।
1: आज छाए गीत का सफर बस यहीं तक। स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छाया गीत। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने, इंतजार कीजिए कुछ पल का।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और

0: मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ प्रोग्राम तराने नए पुराने यही पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार 6:30 पर। तत्पश्चात आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और उसके बाद 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार और रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोगों से ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। और विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर अब से कुछ ही देर पहले गोथेनबर्ग पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवानी की। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ व्यापार, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप्स, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप यात्रा का तीसरा चरण है। वहीं कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने अपने संबंधों को सामरिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर पहुंचे। श्री बिरला ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कोटा में भीम राजपूत हॉस्टल में राजमाता शिवकुमारी बालिका छात्रावास की आधारशिला रखी। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया।
2: आज समाज के अंदर शिक्षा की आवश्यकता, में कलम की आवश्यकता, ये हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने, इसके लिए समाज ने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर काम किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, छात्रावास बनाए, लेकिन वर्तमान की आवश्यकता ये है भारत की महिलाएं समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने कीर्तिमान हासिल, और इस समय आवश्यकता यही है कि समाज ने इतने बड़े संस्कार दिए हैं तो हमारे आने वाली बेटियां
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रशासनिक पदों पर चयनित अधिकारियों से पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं के समाधान का विशेष ध्यान रखने की बात कही है। उन्होंने गांव और गरीब लोगों के लिए काम करना नए भारत के निर्माण की प्राथमिकता बताया। राज्यपाल श्री बागड़े आज जयपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 नव चयनित अधिकारियों और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के 59 नव चयनितों का सम्मान किया गया। राज्यपाल ने अंतिम छोर के व्यक्ति की आवाज सुनने और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आह्वान किया। देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा 2026 का आज आयोजन किया गया। इसमें जेईई मेंस में क्वालिफाई करने वाले 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। आईआईटी रुड़की की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया गया। कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा 2 पारियों में हुई। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर रोक लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार चांदी की कई श्रेणियों से फ्री सूची से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। इन पाबंदियों के कारण अब बिना सरकारी मंजूरी के कोई भी आयातक या जेवरात कारोबारी विदेश से चांदी का आयात नहीं कर सकेगा। गैर जरूरी आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा के खर्च पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ईंधन बचाने की मुहिम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर से अजमेर का सफर रेलगाड़ी से तय किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से संवाद कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की।
3: सबको मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, कार पूलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं अगर हम लोग लेंगे, ये चेंजेस अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत फर्क।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी बीकानेर रेलवे स्टेशन से अपने आवास तक का सफर ई रिक्शा से तय कर ईंधन बचत का संदेश दिया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी आज जोधपुर में लोगों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किफायत से करने का आह्वान किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज आमेर महल का भ्रमण किया। उन्होंने महल परिसर में चल रहे विकास और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। पर्यटकों की बढ़ती आवक को देखते हुए मुख्य सचिव ने आमेर तक पहुंचने वाले रास्तों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल संग्रहालय और गाइड प्रशिक्षण को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
4: जो जयपुर का इतिहास है, आमेर किले में रहता है। आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काफी रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है सासकी में, और हाल ही में 2 दिन पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस समय मैंने देखा काफी कल्चरल कंजर्वेशन का वर्क आईजीएनसी के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। 500 साल पुराना इतिहास को कंजर्व करना बड़ा स्पेशलाइज्ड आर्ट है, तो आज मैंने देखा था और मैं संतुष्ट।
0: इस दौरान पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉ. पंकज और आमेर महल के अधीक्षक डॉ. राकेश भी मौजूद रहे। हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संग्रहालयों के माध्यम से

0: सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। इस मौके पर राज्य के सभी संग्रहालयों तथा स्मारकों में सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश मुक्त रखा गया है। वहीं इससे एक दिन पहले आज जयपुर में हेरिटेज टेम्पल वॉक रखी गई है। इसके जरिए शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण का संदेश दिया गया। कोटा में प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल होने के मामले में कल दिल्ली एम्स की टीम ने कोटा का दौरा किया। इसकी जांच रिपोर्ट अब पेश की जाएगी। इस बीच अब तक 16 से अधिक महिलाओं की किडनी खराब होने के मामले सामने आ चुके हैं। आज न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक और प्रसूता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस प्रकार रहस्यमयी संक्रमण से अब तक 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। आज विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर रखे गए। इनमें विशेषज्ञों ने लोगों के ब्लड प्रेशर की जांच की और इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। इसी कड़ी में झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में भी शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर PMO डॉ जितेंद्र भामू ने लोगों को उच्च रक्तचाप से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समय पर इलाज नहीं करवाने पर इससे कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
1: रक्तचाप एक गंभीर बीमारी के रूप में आम जन के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसमें डायस्टोलिक बीपी है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आम जन को इच्छा है कि समय समय पर अपनी निशुल्क जांच पीडी के अस्पताल में अवश्य कराएं। यहाँ पे दवा, जांच एवं उपचार की विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध।
0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने उदयपुर के प्रतापनगर थाने के ASI सुनील विश्नोई को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ACB के अतिरिक्त SP अनंत कुमार ने बताया कि आरोपी ने ये राशि दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में मांगी थी। राज्य में बीते सप्ताह से मौसम में जारी उतार चढ़ाव और बदलावों के बीच गर्मी का असर फिर से तेज होने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी तथा हीट वेव का प्रकोप रहने के आसार जताए हैं। विभाग ने आज भी 8 जिलों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया है। दिन और रात दोनों के तापमान में उछाल आने की संभावना है। पश्चिम जिलों में लू का सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। इस बीच बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और जैसलमेर में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है और रातें भी काफी गर्म दर्ज की जा रही हैं। वहीं करौली में आज दिन का तापमान 45 डिग्री के पार मापा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार और रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोगों से ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया और विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न क्रियान्वयन समितियों के गठन के आदेश जारी किए गए हैं। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉ. पवन कुमार पारीक ने बताया कि जिलास्तरीय क्रियान्वयन समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर निशांत जैन करेंगे और जिला स्तर पर विभिन्न विभागों, स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी समितियों का गठन कर कार्यक्रम के सफल संचालन, योग प्रशिक्षकों की व्यवस्था, प्रचार प्रसार गतिविधियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं तथा योग प्रदर्शनी के आयोजन की जिम्मेदारी तय की गई है। डॉक्टर पारीक ने बताया कि जनमानस में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में 2 मई से 20 जून तक 50 दिवसीय योग दिवस काउंटडाउन अभियान के तहत विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

0: रही हैं। 21 जून को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक प्रमुख कार्यक्रम रखा जाएगा। इस मौके पर योग विषयक व्याख्यान, कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। बीकानेर के पीबीएम ट्रोमा सेंटर में ओबीआरसी ऑर्थोबायोलॉजिकल रिसर्च क्लिनिक के विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने विधायक कोटे से ये राशि मंजूर करते हुए कहा कि चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक संसाधनों के विस्तार के लिए ये कार्य महत्वपूर्ण होगा। इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं और शोध तथा उपचार कार्यों को मजबूती मिलेगी। जिले में स्कूली विद्यार्थियों को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और राजस्थानी पुस्तकों की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी पुस्तकालय में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को दर्शाते हुए फ्लैग्स तथा प्रदर्शनी लगाई गई है। अकादमी के सचिव शरद केवलिया ने बताया कि पुस्तकालय में उपलब्ध लगभग 14,000 पुस्तकों के संबंध में विद्यार्थियों को बताते हुए राजस्थानी में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बीकानेर में बीते दिनों ग्राम रथ अभियान के जरिए आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ये विकास रथ जिले के गांवों और ढाणियों तक पहुंचे, जहां पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं से लाभान्वित किया गया। ये अभियान कल संपन्न हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से राज्य सरकार आम जन के द्वार तक पहुंचकर किसानों, महिलाओं, युवाओं और सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ देती रहेगी। बीते दिनों जिले के 40 सरकारी विद्यालयों में इंटरैक्टिव पैनल और ड्यूल डेस्क वितरण कार्यक्रम रखा गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजान देसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हुड़को द्वारा सीएसआर के तहत दी गई ये सामग्री बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। हुड़को द्वारा 25 करोड़ रुपए की लागत से सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। इससे इन विद्यालयों के 15,000 विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने बीते दिनों जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पंच गौरव अभियान की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर को योजना के जिला नोडल अधिकारी और आयोजना विभाग के संयुक्त निदेशक धर्मपाल खीचड़ ने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2026-2027 के लिए जिले से 10,55,45,000 रुपए के विभिन्न प्रस्ताव भेजे गए हैं। जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रस्तावों पर जल्दी ही अग्रिम कार्रवाई करने और व्यक्तिगत रूप से समन्वय करने के निर्देश दिए। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में जिले में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। इस अवसर पर जूनागढ़ के सामने स्थित शिखरबंद महादेव मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। शिवालय में रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा गया। इसी कड़ी में प्रसाद वितरण, फूलों की रंगोली और सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन रा प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन रे साथे कारोबार एर रक्षा समेत दूजा हल्का माए आपसी सहयोग माथे बतल करेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ने भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लोगों ईंधन बचत मुहिम माए भागीदारी तय करन री अर्ज करी। और विश्व रक्तचाप दिवस रे मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई जा। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह और अब है समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन री 2 दिन री यात्रा माथे कुछ देर पहला गोथेनबर्ग पुग्या। हवाई अड्डा माथे स्वीडन रा प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टर्सन प्रधानमंत्री श्री मोदी री अगुवाई करी। प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वीडन रा प्रधानमंत्री रे साथे कारोबार, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, सप्लाई कड़ी, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण माथे बतल करेला। दोनों नेता यूरोपीय आयोग री अध्यक्ष सुश्री उर्सुला फॉन डेर लॉयन रे साथे यूरोपियन उद्योग गोलमेज सम्मेलन में बोलेला। आ प्रधानमंत्री श्री मोदी री संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप यात्रा रो तीजो चरण है। वठे काले आपरी यात्रा रा दूजा चरण में भारत और नीदरलैंड्स आपरा हिता ने सामरिक थर माथे ले जार 17 करार करिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डीप टेक्नोलॉजी भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार वेला। आज अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क रा पहला चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस रो उद्घाटन करता वणा कहो कि भारत दुनिया रा हर उभरता हलका में अगवा बन गयो है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज आपरा संसदीय हलका कोटा बूंदी रा दौरा माथे पुग्या। वणा कोटा में भीम राजपूत हॉस्टल में राजमाता शिव कुमारी बालिका हॉस्टल री नींव धरी। ई मौके श्री बिरला कहो कि शिक्षा ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जा सके है। वणा बालिका शिक्षा रा प्रसार सारू खास कोशिश करण माथे जोर दियो।
3: आज समाज के अंदर शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा में कलम की आवश्यकता, ये हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने इसके लिए समाज ने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर काम किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, छात्रावास बनाए, लेकिन वर्तमान की आवश्यकता ये है भारत की महिलाएं समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने कीर्तिमान हासिल करें और इस समय आवश्यकता यही है कि समाज ने इतने बड़े संस्कार दिए हैं तो हमारे आने वाली बेटियां
1: राज्यपाल हरिभा बागड़े प्रशासनिक ओहदा माथे चुनिजा एहलकारों पिछड़ा और कमजोर तबका लोगों ने समस्याओं ने निपटावन सारू खास ध्यान रखने की बात कही है। वणा गांव और गरीब लोगों सारू काम करनो नुआ भारत ने बनाने की प्राथमिकता बताया। राज्यपाल श्री बागड़े आज जयपुर में प्रतिभा सम्मान जलसा में बोल रहा हा। ई कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा रा 3 नुआ चुनिजा एहलकार और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद रा 59 नुआ नियुक्त एहलकारों रो सम्मानी करीजियो। राज्यपाल आखिरी छेड़ा रा मिनखरी आवाज सुनने और चुनी जा जन नुमाइंदा रे साथ चोखा व्यवहार करने री अर्ज करी। देश रा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती सारू होने वाली JEE एडवांस परीक्षा 2026 रो आज आयोजन करीजियो। इन माय JEE मेन्स माय कामयाब रहने वाला 2.5 लाख पढ़ेसर भेड़ा भीया। IIT रुड़की का न्यू आ परीक्षा कराई जी ही कंप्यूटरी मार्फत आ परीक्षा 2 पारियां माए भी। केंद्र सरकार चांदी रा आयात माथे रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय का न्यू जारी अधिसूचना मुजब चांदी ने कई वर्गारी फ्री सूची माऊ हटार इनने प्रतिबंध वाली सूची माए डाल दी जा है। आ पाबंदियां रे कारण अबे बिना सरकारी मंजूरी रे कोई आयात या जेवरात कारोबारी विदेशों चांदी रो आयात नहीं कर सकेला। गैर जरूरी आयात ने कम करण और विदेशी मुद्रा रा खर्च माथे लगाम लगाउन सारू ओ कदम उठाई जो है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा xhandle@AIRnews_jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक माथे AIR News राजस्थान माथे सुन सको हो। इनके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे ही समाचार सुन सको हो और वहाँ जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री ईंधन बचाने री मुहिम में जन नुमाइंदा एहलकार और लोग ही आपरी भागीदारी तय कर रहा है। ई कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर अजमेर रो सफर रेलगाड़ियों पूरो करियो। ई दौरान वणा यात्रुओं रे साथ बतल करने सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट अपनाने री अर्जी करी।
4: सबको मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, कार पुलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें, हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं अगर हम लोग लेंगे, ये चेंजेस अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत फर्क।
1: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाली बीकानेर रेलवे स्टेशन आपरा रहवास ताई रो सफर ई रिक्शाओं तय कर ने ईंधन बचाने रो संदेश दियो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेली आज जोधपुर में लोगों पेट्रोल डीजल ने किफायती काम में लेवन री अर्ज करी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन आज आमेर महल ने देखा, वना महल परिसर में चाल रहा विकास ए संरक्षण रा कामा रो जायजो लियो। सैलानिया री बदती आवक न देखना मुख्य सचिव आमेर ताई पुगण वाला मार्गा ने और बेहतर बनावन रा निर्देश दिया। वना डिजिटल संग्रहालय और गाइड सिखावन ने लेर एहलकारा ने जरूरी निर्देश दिया। ई दौरान पुरातत्व महकमा रा निदेशक डॉक्टर पंकज और आमेर महल अधीक्षक डॉक्टर राकेशी मौजूद रिया।
5: जो जयपुर का इतिहास है आमेर किले में रहता है। आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काफी रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है सासकी में, और हाल ही में दो दिन पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस समय मैंने देखा काफी कल्चरल कंजर्वेशन का वर्क आईजीएनसी के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। 500 साल पुराना इतिहास को कंजर्व करना बड़ा स्पेशलाइज्ड आर्ट है, तो आज मैंने देखा था और मैं संतुष्ट।
1: हर साल 18 मई ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जावे है। इनरो मकसद संग्रहालयों री मार्फत सांस्कृतिक लेन देन और आपसी समझ ने बढ़ावो देवनो है। ई मौके राज्य रा सगला संग्रहालय और स्मारक में आवन वाला सगला सारू प्रवेश मुक्त राखी जो है। वठे इनु एक दिन पहला आज जयपुर में हेरिटेज टेम्पल वॉक राखी जी। इनरी मार्फत शहर री धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर रे प्रति जाग जगावन और उनरा संरक्षण रो संदेश दिरीजियो। कोटा में प्रसूता री मौत एर किडनी फेल होने रा मामला में काले दिल्ली एम्स री टीम कोटा रो दौरो करियो। इनरी जांच रिपोर्ट अबे पेश करी जायला। ई बीचे अजे ताई 16-32 महिलाओं री किडनी खराब होने रा मामला सामी आ चुका है। आज न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक और प्रसूता इलाज रे दौरान दम तोड़ दियो। ई रहस्य वाली संक्रमण अजे ताई 5 प्रसूताओं री मौत वह चुकी है। आज विश्व रक्तचाप दिवस रे मौके प्रदेश में न्यारा न्यारे ठोड़ा जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई गया। आम आए विशेषज्ञ लोगों रा ब्लड प्रेशर की जांच करी और इणु होने वाला नुकसान रा बारा में जानकारी दी। ई कड़ी में झुंझुनू रा BDK अस्पताल में ही शिविर लगाई गयो। ई मौके PMO डॉक्टर जितेंद्र भामू लोगों ने BPU होने वाला बुरा नतीजा की जानकारी दी। वना कहो कि भगत माथे इलाज नहीं करावन माथे इनू कई चिंताजोग स्वास्थ्य समस्याओं रो सामनो करनो पड़ सके है।
6: रक्तचाप एक गंभीर बीमारी के रूप में आम जन के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसमें डायस्टोलिक BP है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आम जन को इच्छा है कि समय समय पर अपनी निःशुल्क जांच PDK अस्पताल में अवश्य कराएं। यहाँ पे दवा जांच एवं उपचार की विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध।
1: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB उदयपुरा प्रतापनगर थाना रा ASI सुनील बिश्नोई ने 1 लाख रुपये की घूस लेवता गिरफ्तार किया है। ACB रा अतिरिक्त SP अनंत कुमार बतायो के आरोपी आ रकम दुष्कर्म की कोशिश और छेड़छाड़ रा मामला में मुकदमो दर्ज नहीं करने की एवज में मांगी ही। बालोतरा कने आज एक सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हुएगी। दुर्घटना भारत माला एक्सप्रेस वे माते हुई। जिला पुलिस अधीक्षक रमेश बतायो के एक तेज रफ्तार कार रे बेकाबू वेर पलट जावन उनमें सवार 3 लोग मौका माथे दम तोड़ दियो। वठे 3 दूजा गहरा घायल हो गया। ए लोग गुजरात रा बनासकांठा जिला रा धानेरा गांव रा रहवासी बताया जावे। उठी ने अजमेर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 माथे नागौर जिला रा चकढाणी गांव में एक कार और रोडवेज बस री टक्कर वेगी, जिनमें 4 लोगों री मौत वेगी और 4 गहरा घायल हो गया। उठी ने पाली जिला रा देसूरी हल्का में घाणेराव गांव में दूषित भोजन काम में लेवणु 11 लोगों की तबियत बिगड़ गई। वहां रो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करायो जावे। नाबे मौसम राज्य में लारला हफ्ताओं मौसम में चाल रो उतार चढ़ाव और बदलाव रे बीच गर्मी रो असर फेरू तेज होवन लाग्यो है। मौसम महकमो आवता 2-3 दिन में तापमान में और बढ़वार और हीटवेव रो असर रहने रा आसार जताया है। महकमो आज ही 8 जिला में लू रो येलो अलर्ट काढ़ियो है। दिन और रात रा तापमान में उछाल आवन री आस है। आथुणी और आथुणी अगुणी जिला में लू रो सबू 32 असर देखियो जावे। ये बीच बीकानेर चूरू बाड़मेर और जैसलमेर में करड़ी गर्मी रो दौर चल रही है। रात में घनी गर्मी दर्ज करी जावे। वठई करौली में आज दिन रो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार नापी जियो। डीग जिला में खेती महकमा कान्यू सघन गुण नियंत्रण अभियान चलायो जावे। 15 जुलाई तक चलने वाला ये अभियान के तहत खेती महकमा की टीम दुकाना और खाद बीज और कीटनाशक का नमूना भेड़ा करेला, इन्हें प्रयोगशाला में भेजने वाली गुणवत्ता जांची जाएला। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक और फेरों सुन दे रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन रा प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन रे साथे कारोबार और रक्षा समेत दूजा हल्का में आपसी सहयोग माथे बातल करेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ने भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लोगों ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी तय करन री अर्ज करी और विश्व रक्तदान दिवस मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाया। नेंद्र साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरोवियो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।
7: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारे मुंबई केंद्र से होगा कार्यक्रम जयमाला। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

साथियों, वक्त की पेशानी पर लिखी तकदीर को भला कौन मिटा सकता है, लेकिन ये तकदीर भी बदल जाती है, सारी तदबीरें उलट जाती हैं जब हौसलों की बुलंद परवाज आसमां को छूती है। कुछ ऐसे ही खुशकिस्मत होते हैं वतन के वो पासबां जिन्हें वतन की खिदमत का फक्र हासिल होता है। वतन की हिफाजत जिंदगी का मकसद बन जाती है, फिर जिंदगी कम ही सही खुशियों से गुजर जाती है। मौत उन्हें फिर क्या डराएगी, जिंदगी जिनके कदमों तले होती है। मुस्कुराएं तो वतन की खातिर, मर मिटें तो वतन की खातिर। आइए आज नमन करें राजपुताना राइफल्स की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बांके सिपाही हवलदार दयाराम को। राजपुताना इन्फेंट्री के वो होनहार सिपाही जिन्हें न तपती रेत की परवाह, न लंबे रास्तों का खौफ, न सूरज की तपिश की चुभन, जिन्होंने जब जब केसरिया बाना पहना, हथियार हाथ में थामे, तब तब लिखी फतेह की एक और इबारत।

जिंदगी के सफर की चुनौतियों को पार कर अपनी कुशलता को सिद्ध कर दयाराम सेना में शामिल हो गए। उन्हें पहली राजपूत इन्फेंट्री सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की चौथी गार्ड में बतौर सैनिक भर्ती कर लिया गया। हालांकि ये खिदमत बतौर अंग्रेजी हुकूमत के मुलाजिम के तौर पर थी, लेकिन ये तजुर्बा यकीनन देश के काम आया। द्वितीय विश्व युद्ध में सेना के तमाम अनुभवी सैनिकों में दयाराम भी अग्रणी थे। सन 1947 में तमाम कोशिशों और शहादतों के बाद देश आजाद हुआ। चेहरे पे मुस्कान आई, लेकिन विभाजित भारत की सरहदें फिर भी बेचैन ही रहीं। इस अजीम और शान मुल्क से अलग हुए राष्ट्र की प्यास बुझने का नाम न लेती। उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी सरहदों

खतरे की सुगबुगाहट को भांपा गया और जश्न आजादी के दरमियान ही भारतीय सेना को उत्तर पश्चिमी सरहदों की तरफ रवाना होने के आदेश जारी कर दिए गए और ये सिलसिला चलता ही रहा।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। आदेशानुसार 1948 में लांस नायक दयाराम को भारत की उत्तरी पश्चिमी सरहद से सटे

गांव टेनधर कूच करना था। ये इलाका पूरी तरह से संवेदनशील था, जहां दुश्मन सेना के सैनिक सरहद में दाखिल होने के फिराक में घात लगाए बैठे थे। राजौरी, झांगर, उरी, कठुआ, बांदीपुरा, जम्मू और कश्मीर के रास्ते भारतीय सेना की अन्य टुकड़ियों को भी रवाना कर दिया गया था, जिससे शत्रुओं पर चौतरफा निगरानी रखी जा सके और सेना को कवर फायरिंग भी दी जा सके। 6 फरवरी सन 1948 की वो सुबह, जब हाड़ कपा देने वाली ठंड और चारों ओर बिछी बर्फ में रास्ता बनाना, चलना और मिशन को अंजाम देना खासा चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ हवलदार दयाराम नौशेरा से उत्तर की तरफ टेनधर के इलाके में बढ़ने लगे।

0: ऐसे मौसम में शत्रु के कहीं भी छुपे होने का अंदेशा भी गहरा था। खबर पक्की थी कि दुश्मन सैनिकों ने सुबह 6:40 के लगभग टेनधर की चौकियों पर हमला बोल दिया है, जिसमें चौकी पर तैनात सैनिक, उनकी पोस्ट, असलाहों के जखीरे सभी इस खतरे की जद में आ गए। अपनी सैनिक टुकड़ी को हवलदार दयाराम ने दो तरफा हमले का सुझाव दिया, जिससे दुश्मनों के भागने के रास्ते बंद किए जा सकें और उन्हें वहीं घेर कर ढेर कर दिया जाए। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा। कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
1: फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। इस बीच ये खबर भी मिली कि तीसरी पैरा बटालियन राजपूत रेजिमेंट की एक और कंपनी को टेनधर रवाना कर दिया गया है। देश की सरहद की सुरक्षा के मद्देनजर टेनधर की ये चौक।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: को सुरक्षित भी किया जा सकता था। भारी शेलिंग के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना हवलदार दयाराम ने युद्ध के मोर्चे को संभाला। सरहद पार से उठे जंग के इन शोलों की लपट इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर और सरहदी गांवों में भी गोलियों की गड़गड़ाहट शत्रु की मौजूदगी का एहसास कराती थी। पल को खामोशी तो दूसरे ही पल आसमान में घुलता बारूद जम्मू कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलता रहा। मौसमी रंग में नहाए चनार के दरख्त बेरंग नजर आते थे। जिंदगी सिसकियों की सांस भरती रही। भला उन नरगिसी फूलों, उन सफेद झीलों, उन प्रेम के पंछियों और पुरसकून वादियों को नफरतों से क्या लेना।

तक अपने सहायक सैनिकों के साथ पोजीशन ले चुके हवलदार दयाराम ने अपनी सूझबूझ और फुर्ती से युद्ध करते हुए दुश्मन सैनिकों को पीछे धकेल दिया। लेकिन इससे पहले कि दयाराम और उनके साथी संभल पाते, दुश्मनों का एक और जत्था आगे बढ़ा और एक बार फिर बारूद के उठते शोलों में सब कुछ धुआं धुआं सा नजर आने लगा। ये मुठभेड़ घंटों चलती रही। भारतीय सेना की इस चौकी में कई सैनिक घायल हुए, जिन्हें तत्काल बाकी सैनिकों ने कवर देते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। न सिर्फ एक या दो बार बल्कि लगातार 5 बार इस मुठभेड़ के दौरान दुश्मन सैनिकों ने हवलदार दयाराम पर हमले किए और इन हमलों को वो लगातार विफल भी करते रहे। काफी सैनिक इस मोर्चे पर घायल हुए, फिर भी मोर्चे पर दयाराम डटे रहे और हथगोले फेंक कर दुश्मनों के दांत खट्टे करते रहे।

इस बीच उनकी पोस्ट पर लाइट मशीन गन, जिसे LMG या ब्रेन गन भी कहते हैं, इसे चलाने वाला सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ। ये देखकर दुश्मनों के हौसले बढ़े और उन्हें लगा कि मंजिल अब तो करीब है। लेकिन इसी बीच घायल अवस्था में भी पूरी फुर्ती से हवलदार दयाराम ने LMG को संभालते हुए दुश्मनों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। उनके चंद बचे सैनिकों ने जब उन्हें इस तरह दुश्मनों पर टूटते देखा तो वो भी पूरी ताकत से हमलावर होते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े और दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा दी। अफरा तफरी के इस माहौल में अब तक 24 दुश्मन सैनिकों को हवलदार दयाराम ने वहीं मार गिराया और बाकी बचे पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन कोई 3 शत्रु सैनिक अब भी दबे पांव आगे बढ़े। लहू से लथपथ दयाराम ने इनमें से 2 को तो मौत की नींद सुला दिया, लेकिन तीसरा अब भी आगे बढ़ता रहा। इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, दयाराम ने बड़ी फुर्ती से एक हथगोला उसकी तरफ फेंका और उसके भी परखच्चे उड़ गए। साथियों, हवलदार दयाराम ने न सिर्फ टेनधर की इस बेहद महत्वपूर्ण चौकी को बचाया, बल्कि तमाम असलाहे और ब्रेन गन को भी शत्रु के हाथों में जाने से बचाया। साथ ही चौकी पर 4 और घायल पड़े भारतीय सैनिकों की जान को भी बचाया और टेनधर की इस मुहिम में फतह हासिल की। भारतीय सेना की एक और जीत का इतिहास सुनहरे पन्नों में दर्ज कर दिया गया। ये फतह भारतीय सेना की कामयाब मुहिम का एक ऐसा हिस्सा थी जो विपरीत परिस्थितियों में भी जंगी हवाओं के रुख को मोड़ने का ताब रखती है। जब सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर

जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा प्रस्तुत कार्यक्रम साज और आवाज। सबसे पहले सुनते हैं इस गीत की धुन को। क्लिनेट पर है मास्टर इब्राहिम।

आइए सुनते हैं अब इस गीत की धुन को फिल्म तीसरी कसम से। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का और आवाज़ मुकेश की।

आइए सुनते हैं अब इस गीत को फिल्म मॉडर्न गर्ल से, आवाज़ सुमन कल्याणपुर और मुकेश की, गीत के बोल गुलशन बावरा के और संगीत रवि किशन का।

0: आज के कार्यक्रम में सुनिए चिरंजीत की लिखी हास्य नाटिका क्रोध हरण शलाका।
1: मुन्नू की माँ, अरे भाई मुन्नू की माँ
2: आ गए स्कूल से?
3: मुन्नू नहीं आया।
1: अरे बताया तो था कि मुन्नू पढ़ाई में बहुत कमजोर है। ऐसे कमजोर लड़कों को हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी छुट्टी के बाद रोककर खुद पढ़ाती।
2: मास्टर का लड़का और कमजोर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खुद मास्टर होकर भी अपने लड़के को पढ़ा नहीं सकते। लेकिन तुम लड़के को घर में पढ़ाओगे कैसे? तुम्हें तो अपने सैर सपाटे से ही फुर्सत नहीं। लेकिन अब मैं देखूंगी कि तुम
1: फिर गुस्से का दौरा पड़ा मुन्नू की माँ। देखो जल्दी से क्रोध हरण शलाका मुंह में रखो वरना अनर्थ हो जाएगा।
2: अरे हाँ, मुझे तो क्रोध नहीं करना चाहिए था। लो ये रख ली मुंह में मैंने क्रोध हरण शलाका।
1: ठीक, अब तुम इसी तरह इसे मुंह में दबाए 15 मिनट के लिए उस कमरे में जाकर बैठ जा। 15 मिनट के लिए जुबान को एकदम बंद रखना। कैसा चैन है। अरे आज 6 बजे मैंने रमेश और उसकी पत्नी को चाय के बहाने से बुलाया था, पता नहीं वो अब तक क्यों नहीं आए। सोचता हूं अगर इस क्रोध हरण शलाका से उसका भी भला हो जाए तो क्या बुरा है। शायद वो आ गए। अरे आ गए रमेश।
4: नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते
4: जी, आपने बुलाया था, कैसे नहीं आता?
1: लीला नहीं आई?
5: लीला जी वो आ रही है पीछे।
1: लगता है आते आते रास्ते में फिर झगड़ा हुआ।
5: हाँ मास्टर जी, झगड़ा करते समय लीला घर बाहर कुछ नहीं देखती। नरक भोग रहा हूँ नरक।
1: जानता हूँ रमेश, सब कुछ जानता हूँ। आज मैं उसे ऐसा उपदेश दूंगा, उसके सामने आदर्श गृहिणी का ऐसा नमूना पेश करूंगा कि लीला एकदम प्रेममयी, स्नेहमयी, मधुर स्वभावमयी गृहिणी बन जाए।
5: सच्ची मास्टर जी।
1: और तुम्हारा घर बन जाएगा स्वर्ग का नमूना। और हाँ, पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सब तुम्हें भी आज मुझसे सीखना होगा।
5: जरूर सीखूंगा मास्टर जी। माने लेता हूँ कि आज मैं 25 वर्ष बाद फिर आपकी क्लास में पढ़ने आया हूँ। लीला आ रही है।
1: आइए आइए लीला जी, मैं दरवाजे पर आपके ही स्वागत के लिए खड़ा हूँ।
6: नमस्ते मास्टर जी।
1: नमस्ते बेटा।
6: मुझे पीछे छोड़कर पहले यहाँ पहुँच गए? क्या लड्डू मिल गए यहाँ आकर तुम्हें? तुम्हें तो मेरे साथ आते हुए भी शर्म आ रही
1: है। शांत शांत शांत शांत लीला जी, शांत। रमेश
5: जी, जी मास्टर जी,
1: ये बात बुरी बात है, तुम्हें लीला जी के साथ आना चाहिए था
5: जी।
1: ये ठीक है कि जीवन में मर्द जरा तेज चलते हैं।
6: अरे हाँ तेज चलते हैं, हमारे ये तो जन्म जन्म के फिसड्डी हैं, फिसड्डी। इनके साथ के बाबू अफसर बन गए और ये अभी तक।
5: अच्छा बाबा, मैं फिसड्डी ही सही। मास्टर जी मेरे बचपन के गुरु हैं, इनके सामने तो मेरी पत्नी उतारो, घर में भी झगड़ा बाहर भी झगड़ा।
6: अच्छा तो तुम अपने इन मास्टर जी के सामने ये साबित करना चाहते हो कि मैं झगड़ालू हूँ, लड़ाका हूँ?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं लीला जी नहीं, आपने तो बड़ा ही मधुर और स्नेहपूर्ण स्वभाव पाया है। उस दिन मुन्नू की माँ भी आपके घर गई थी, वो तो आपकी सराहना करते ही नहीं।
4: मास्टर जी क्या बात है, लगता है घर में जैसे ना मास्टरानी जी हैं ना मुन्नू है।
1: अभी बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। मुन्नू की माँ, 15 मिनट हो गए, मुझे क्रोध हरण शलाका निकाल कर बाहर चली आओ।
4: क्रोध हरण शलाका?
1: अरे भाई देखो रमेश आया है।
2: मेरा भाई रमेश आया है। ये तो कोई
1: भाई का नाम सुनते ही मुन्नू की माँ कैसी लपकी आई। रमेश
4: जी,
1: तुम्हें शायद पता नहीं, इनके भाई यानी कि मेरे साले का नाम भी रमेश है।
4: साले का?
1: वो बंबई की एक बहुत बड़ी फर्म में काम करता है
4: जी।
1: तुम जितने नेक हो वो उतना ही दुष्ट है।
2: जवान संभाल कर बोला जी है? मेरे देवता सरी के भाई का दुष्ट कहते हो?
1: शां शां शां, लगता है क्रोध हरण शला का पूरे 15 मिनट मुंह में नहीं रही।
2: मुझसे भूल हुई जी, मुझे छोटी सी बात पर यूं क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे भाई को दुष्ट कहा तो मुझे मजाक मानकर हंस देना चाहिए था।
1: कमाल।
2: आओ लीला, आओ रसोई में चलें, वहीं बैठकर बातचीत करेंगे। मुन्नू के बापू।
1: हाँ, मुन्नू की माँ।
2: तुम रमेश को संभालो, मैं अभी चाय बना कर लाई। आओ लीला।
7: चलो दीदी।
5: मास्टर जी, आपने ये क्या जादू किया? मुन्नू की माँ का स्वभाव तो इन्हीं एकदम बदल गया।
1: हाँ।
8: पहले तो ये भी लीला की तरह झगड़ालू, क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव की थी।
1: रमेश
5: जी।
1: अरे भाई, ये सब इस क्रोध हरण शलाका की करामात है।
5: हाँ? क्रोध हरण शलाका का नाम की ये लोहे की सलाई आपने भी अपनी जेब में डाल रखी है।
8: मास्टर जी, मास्टर जी।
1: हाँ।
8: आखिर ये है क्या चीज?
1: अरे भाई, तुम इसे चमत्कारी थर्मामीटर कह सकते हो।
5: थर्मामीटर?
1: हाँ। देखो, आम थर्मामीटर तो केवल टेम्परेचर बताता है
5: जी,
1: परंतु ये क्रोध हरण शलाका दिमाग के टेम्परेचर को, मतलब ये कि दिमाग की गर्मी को 15 मिनट में ठंडा कर देती है।
5: यानी जितनी गर्मी है दिमाग को ठंडा कर देती है।
1: ये दिमागी गर्मी ही क्रोध कहलाती है।
5: वाह वाह।
1: घरों में पति पत्नी के झगड़े इसी दिमागी गर्मी के कारण ही होते हैं। देखो, 10-12 दिन हुए
5: जी,
1: उत्तराखंड की गुफाओं के वासी एक सिद्ध महात्मा दिल्ली आए
5: जी।
1: उनसे मेरी अचानक भेंट हो गई, उन्हें मैं घर ले आया। उन दिनों मुन्नू की माँ मुझसे लड़कर मैके गई हुई थी। मैंने महात्मा जी को अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने मुझे 4 क्रोध हरण शलाकाएं दी और कहा कि बच्चा, इनका उपयोग तुम भी करो, तुम्हारी पत्नी भी करे, घर में सदा सुख और शांति रहेगी। जिसे भी क्रोध का दौरा पड़े, वही शलाका को 15 मिनट के लिए थर्मामीटर की तरह मुंह में रख ले।
5: वाह।
1: क्रोध अपने आप ठंडा हो जाएगा। मुन्नू की माँ जब मायके से लौटी तो मैंने उसे 1 क्रोध हरण शलाका दे दी, 1 अपने पास रख ली
5: जी।
1: जब मुझे भी गुस्सा आता है तो मैं ये शलाका 15 मिनट के लिए मुंह में रख लेता हूँ।
5: आप भी?
1: हाँ, गुस्सा का पूर हो जाता है।
5: वाह वाह वाह वाह, ये तो कमाल की चीज है मास्टर जी।
1: हाँ।
8: बाकी की 2 शलाकाएं आपके पास है ना मास्टर जी?
1: हाँ। अपने किसी परम प्रिय मित्र को देने के लिए वे दोनों ही मैंने अंदर की अलमारी में संभाल कर रखी हुई है।
8: तो मास्टर जी, 1 क्रोध हरण शलाका मुझे लीला के लिए दे दीजिए ना।
7: मास्टर जी, दीदी ने मुझे क्रोध हरण शलाका का हाल सब सुना दिया है।
1: अच्छा।
7: मास्टर जी, 1 शलाका मुझे भी जरूर दे दीजिए।
1: जरूर।
7: मुझे भी जब गुस्सा आएगा तो मैं 15 मिनट के लिए उसे अपने मुंह में रख लिया करूंगी।
1: लीला जी, इस शलाका का उपयोग मेरी तरह रमेश को भी करना चाहिए। घरेलू जीवन के सुख

0: प्रिंसिपल साहिबा, आप आए, मेरा मुन्नू क्यों रो रहा है?
1: माता जी, प्रिंसिपल साहिबा ने आज मुझे मारा, मुर्गा बनाया और अब कान से पकड़कर घसीटती हुई लाई है।
0: अब ये कौन होती है मेरे बेटे को मारने वाली?
2: मास्टर ने जी, आप मुंह से क्रोध हरण शलाका ना निकालिए, अभी 15 मिनट नहीं हुए। मैं प्रिंसिपल साहिबा से बात करता हूँ।
3: आप मुझसे क्या बात करेंगे? कहाँ है मास्टर सिलबिल? ये शैतान लड़का पढ़ने में ही कमजोर नहीं, चोर भी है। मैंने विलायत से प्लैटिनम की सलाइयां मंगवाई थी, मुन्नू ने चुरा कर टुकड़े टुकड़े कर दी। आज 2 टुकड़े इसकी जेब में पाए गए। वो देखो, उन सलाइयों का एक टुकड़ा तो मुन्नू की माँ अपने मुंह में दबाए बैठी है।
0: क्या? पहले मेरे लड़के को चोट ठहराया और अब मुझे भी चोट?
2: मीनाक्षी जी, ये तो क्रोध हरण शलाका है।
4: अरे मुन्नू की माँ, अरे भाई रमेश भाई, बहुत झूठा बाकी की 2 शलाका।
0: अरे सुना तुमने, तुम्हारी ये मीनाक्षी क्या कह रही है?
2: कहाँ?
4: ओह, मीनाक्षी जी आई है। क्षमा कीजिए, पहले मैंने आपको देखा ही नहीं। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मुन्नू की माँ, जल्दी से इनके लिए चाय लाओ।
0: चाय तो बाद में आ जाएगी, पहले ये तो सुन लो कि ये सारे घर को अपनी सलाइयों का चोट ठहरा रही है।
4: सलाइयां?
0: हाँ।
4: कैसी सलाइयां
3: मास्टर जी?
4: कैसा चोर?
3: मैंने स्वेटर बुनने के लिए प्लैटिनम की चमचमाती सलाइयां विशेष रूप से विलायत से मंगाई थी। एक दिन वो सलाइयां स्कूल में खो गई। मैंने सब जगह ढूंढा, सबसे पूछा। आपको तो याद है ना सिलबिल जी?
4: मुझे तो कुछ भी याद नहीं।
3: आज उन सलाइयों के 2 टुकड़े मुन्नू के पास से मिले। एक टुकड़ा अभी अभी मुन्नू की माँ अपने मुंह में दबाए बैठी थी।
2: मीनाक्षी जी, और एक टुकड़ा अभी आपको मास्टर जी की जेब में मिलेगा।
0: तो रमेश, क्या तुम्हारा मतलब है कि मुन्नू के बापू ने वो सलाइयां चुरा कर उनकी ये क्रोध हरण शलाकाएं बनाई है?
2: लगता है मुन्नू के पास वही टुकड़े पाए गए हैं जो सिलबिल जी अलमारी में ढूंढ रहे हैं।
3: मेरी कीमती सलाइयों की ये दशा, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी।
0: मुन्नू के बापू, तुमने चोरी की है।
4: मैंने नहीं।
0: चोरी की है, चोरी करके मुझे धोखा दिया है तुमने। साधु महात्मा की देन बताकर सलाइयों के टुकड़ों से 15-15 मिनट के लिए मेरा मुंह बंद कर दिया। बीवी के साथ ऐसा धोखा? आज मैं चगाती हूँ।
2: आज मैं मास्टर जी की सूझबूझ का लोहा मान गया। मैं बताता हूँ लीला तुम्हें।
5: हाँ?
2: एक पति अपनी बीवी की बटझक से बहुत परेशान था। जैसे मैं, बीवी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने टेम्परेचर मालूम करने के लिए थर्मामीटर दिया और कहा कि बीमार बीवी आध मिनट तक थर्मामीटर मुंह में रखे। बीवी की बटझक से परेशान पति बोला, डॉक्टर साहब, कोई ऐसा थर्मामीटर दीजिए तो कम से कम 15 मिनट तक बीवी के मुंह में रखा जाए। मास्टर जी ने खुद ही स्वेटर बुनने की सलाइयों का ऐसा थर्मामीटर बना डाला जो बीवी का मुंह 15 मिनट तक बंद रहे।
0: अच्छा, तो मेरा मुंह बंद करने के लिए ये क्रोध हरण शलाका का ये प्रपंच रचा गया था?
5: दीदी, मेरे इलाज के लिए मास्टर जी क्रोध हरण शलाका की भेंट हमें भी दे रहे हैं।
4: अब भाई, तो मैंने
0: मुन्नू के बापू, मेरा जी चाहता है कि यार आज तो मैं तुम्हें मार दूं।
2: लीला, हम बाल बाल बच गए। चोरी का माल जब हमारे पास से भी बरामद होता तो क्या होता?
3: मास्टर जी, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती। कल से मेरे स्कूल में ना आना, मुझे नहीं चाहिए ऐसा चोट्टा मास्टर।
4: भगवान, ये क्रोध हरण शलाकाएं तो नौकरी हरण शलाकाएं साबित हुई। मीनाक्षी जी, सुनिए।
6: अभी आप सुन रहे थे चिरंजीत की लिखी हास्य नाटिका क्रोध हरण शलाका। निर्देशक थे दीनानाथ। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।

0: एक नई खुशी।
1: जेडी लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयर हाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म वॉर से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत विशाल शेखर का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोताओं, एक गीत आपने सुना फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया से। आवाज़ मित्रास की थे, गीत के बोल और संगीत मित्रास के ही थे। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: बैंक से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, स्वर्ण विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, पटेल नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडर पास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, अटल योजना, वसंत कुंज, गोविंदपुरा, न्यू आतिश मार्केट, द रिंग एवेन्यू, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा मई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मल

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म तू झूठी में मक्कार से, आवाज़ें सुनिधि चौहान और साथियों की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शाश्वत सिंह का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। NCB ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग NCB और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक NCB मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के NCB मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म देवा से। आवाज़ें मीका सिंह, विशाल मिश्रा और ज्योतिका टंगरी की थी। गीत के बोल राजेश शेखर के और संगीत विशाल मिश्रा का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: होरोस्कोप।
1: तुम्हें याद करते करते
2: छाया गीत
1: लग जा गले।
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: तेरे मेरे सपने अब
2: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
2: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म बैंग बैंग से, आवाज़ें बेनी दयाल और नीति मोहन की, गीत के बोल अन्विता दत्त और कुमार के, और संगीत विशाल और शेखर का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोताओं, एक गीत आपने सुना फिल्म युद्धरा से, आवाज़ें विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बान नहीं होती।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा, जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे, और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की समझ में आ जाए।

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में गूंजने लगी।

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल

उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है। इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

की दुनिया में आने से पहले पंकज उदास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए। कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

अब बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

ये दिल लगी नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उदास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उदास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में K.L. सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादाभाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर। प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। दर्द

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती। वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
2: आज फिर जीने की तमन्ना है।
1: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बान नहीं होती, वो सिर्फ एहसास से बयां हो तो बहुत खूबसूरत बन जाती है। जिंदगी को संवारती है मोहब्बत। एक तरफा मोहब्बतों की इतनी कहानियां हैं दुनिया में जितने आसमान में तारे। ऐसी मोहब्बतों का रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है और मंजिल किसी छाया की तरह दूर सरकती चली जाती है।

रास्तों के ऊबड़ खाबड़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन रास्तों से हट जाएं। एक तरफा मोहब्बत में पड़ने वाले ही जानते हैं कितनी खरोचों और कितने जख्मों से भरा होता है मोहब्बत का रास्ता। संग दिल दुनिया सवाल उठाती है, तंज करती है, रास्ते में मुश्किलें खड़ी करती है, पर लोग हटते नहीं अपने रास्तों से। वो तो बस तमाम उदासियों और तमाम मासूमों के बावजूद बढ़ते चले जाते हैं। उनकी मुस्कानों के पीछे होती हैं तरह तरह की रुसवाइयां।

गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। अभी आए।

भी होता है कि अनायास जुबां पर तुम्हारा नाम आ जाता है। यूं भी होता है कि कोई भूली बिसरी याद तैर आती है मन के आसमान पर। अचानक ही आई तुम्हारी ये याद किसी जुगनू की चमक जैसी होती है। हमने कहा ना कि दिल पर लिखा तुम्हारा नाम मिटाया नहीं जा सकता। दिल तो बस तुम्हें पुकारता है हर पल हर घड़ी।

साथ के पल बीत जाते हैं जल्दी, कहते हैं कि खुशियां तेजी से चली जाती हैं, एक तरफा इश्क की राहों पर बहार आती ही नहीं, आए भी तो थोड़ी देर को आती है और फिर चली जाती है। ऐसा ही था वो दौर जब अचानक खिलने लगे थे फूल, जब अचानक गुनगुनाने लगा था वो, और जब अचानक सब कुछ खुशनुमा सा हो गया था। यूं जैसे बहार आई और बस ठहर गई, पर हर बहार को एक दिन बीत जाना होता है।

आसमान पर चमक रहे हैं तारे। तारों की झिलमिल रोशनी अच्छी लगती है, लेकिन ये तारे मिलकर अचानक बनाते हैं एक चेहरा। आसमान पर चमकता वो चेहरा दिल में बेचैनियां पैदा करता है और फिर कुछ नहीं सोचता। ऐसे खामोश, ऐसे उदास दौर में दिल कुछ कहना चाहता है तुमसे, पर कहता नहीं है। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, वो बिना कहे बस पहुंचा दी जाती हैं तुम तक।

0: फिल्म मेरा घर मेरे बच्चे।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित

0: किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज़्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 11:05 का समय हुआ है। अब आज की ये प्रसारण सभा हम यहीं पर संपन्न करते हैं। कल प्रातःकालीन सभा में 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।